0: जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों न पहुंच जाए। श्री मोदी ने गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद के दौरान ये बात कही।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधारोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, जर्मनी के विदेश मंत्री योहान डेविड वाडेफुल और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सू शामिल हुए। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत प्रशांत

0: द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। बैठक में सहयोग मंच के शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा भी हुई। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया था। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी, इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना में मृतकों के निकटतम परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों का इलाज और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जापान एशियाई खेलों में भारत की रोशिबिना देवी नाउरेम ने वुशू में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today said service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said in politics too, service should remain the guiding principle even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi. The Prime Minister said Seva Paramo Dharma, service is the highest duty, should remain the guiding principle.
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: During the interaction, Seva Yatris shared their experiences with the Prime Minister. They said they planted saplings and conducted cleanliness drives as part of the campaign. They added that during the Yatra, they interacted with people and received their positive feedback on the benefits of various government schemes. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani at 11 a.m. on Sunday. It will be the 138th episode, which will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR News website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News,

0: नमस्कार। आज सुबह जब खिड़की खुली दोस्तों, तो हवा में सच बताऊं वो पहली ठंडक महसूस हुई जो बताती है कि मौसम अब करवट लेने लगा है। उसी ठंडी हवा के साथ हम आपके बीच फिर से हाजिर हैं और कार्यक्रम है आपका अपना घर आंगन। और स्वीकार कीजिए रश्मि कुकरेती का और
1: मेरा यानी श्रुति पुरी का नमस्कार।
0: श्रोताओं,
1: ये कार्यक्रम आपको सुनाई देता है आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। इसके अलावा इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो

0: हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर भी इसे सुना जा सकता है। और जो श्रोता डिजिटल माध्यम से हमसे जुड़े रहना पसंद करते हैं उनके लिए हम मौजूद हैं यूट्यूब के चैनल AIR न्यूज लाइव 24/7 पर।
1: भाई वाह, क्या बात है श्रुति जी, बड़ी जबरदस्त आपने गाड़ी चलाई। लेकिन मेरा तो ये कहना, मेरा क्या, संत कबीर का ये कहना है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। यानी जिंदगी में जल्दबाजी से नहीं बल्कि धैर्य और सहजता से ही चलने पर असली सफलता मिलती है।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही है आपने। और वैसे भी रश्मि जी, अब त्योहारों का मौसम आ रहा है और धीरे धीरे ये ना हमारे घर आंगन में भी दस्तक दे रहा है और हमने तैयारियां करनी शुरू कर दी है। तो इसी उत्सव के माहौल को ध्यान में रखते हुए हम अपने श्रोताओं से एक सवाल पूछना चाहते हैं।
1: मीठा मीठा सवाल।
0: हाँ, मीठा मीठा सवाल। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि बताइए, घर में कोई खास मौका या त्योहार आने पर आप मीठे में सबसे पहले क्या बनाना तय करते हैं? और अपने जवाब हमें भेजिए हमारी ईमेल आईडी fmgoldga@gmail.com पर। ईमेल आईडी एक बार फिर नोट करिए, fmgoldga@gmail.com पर। और जब तक आपके जवाब हम तक पहुंचे, आइए सुनते हैं ये गीत।

0: पेइंग गेस्ट। इस फिल्म में अभी आप आशा भोसले और किशोर कुमार को सुन रहे थे। रश्मि देखो, पिछले हफ्ते किसी रिश्तेदार से बात हो रही थी मेरी, जो मुंबई में रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि उनके घर की खिड़की से बंदरगाह पे लगे बड़े बड़े जहाज दिखते हैं। ये सुनकर मन में एक पुरानी बात ताजा हो गई कि हमारा देश तो सदियों से समुन्द्र से जुड़ा हुआ है, और आज यानी 24 सितंबर को हर साल विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने इस साल 2026 और 27 दोनों के लिए एक साझा विषय दिया है, जिसका भाव है नीति को व्यवहार में बदलना और समुद्री उत्कृष्टता को शक्ति देना।
1: बिल्कुल, और भाई जो भारत है वो तो उसके व्यापार का बड़ा हिस्सा समुद्री रास्तों से होकर गुजरता है श्रुति, और हमारे नाविक और मछुआरे परिवार इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ हैं। तो भाई उनकी मेहनत के बिना ना तो बंदरगाह चलेंगे ना ही व्यापार आगे बढ़ेगा। और देखिए ना, संभावनाएं समुद्री पर्यटन की कितनी अपार संभावना है, गोवा, केरल, उड़ीसा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तमिलनाडु, गुजरात के तट, और इसके अलावा जिसे कहते हैं जैव विविधता, मछुआरे समुदाय और जलवायु संतुलन का एक महत्वपूर्ण आधार है समुद्र। तो भाई इन तटीय परिवारों को हमारा प्रणाम, जिनकी वजह से हमारे घरों तक इतनी सारी चीजें पहुंच पाती हैं।
0: बिल्कुल।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म समुंदर में।
1: श्रुति, कल शाम को मुझे एक जगह ना ढोल बजने की आवाज आई, तो ना सच बताऊं कि मेरा जो मन है ना एकदम अपने गांव के मेले में पहुंच गया। वहां ना इतनी भीड़ और इतनी रौनक और इतने रंग एक साथ होते थे, और वहां ना एक हर साल एक मेला लगता था जिसमें झूले होते थे और मिट्टी के खिलौने होते थे, और सच बताऊं वो मशहूर जलेबी वाला जिसकी दुकान पर सबसे लंबी कतार लगती थी।
0: असल में गांव में लगने वाले मेले सिर्फ मनोरंजन की जगह नहीं होते बल्कि हमारी गांव की संस्कृति की धड़कन हुआ करते हैं। फसल कटने के बाद पूरे साल की मेहनत का उत्सव इसी मेले में मनाया जाता है, और तभी लोकगीत गाए जाते हैं, कठपुतली नौटंकी जैसी लोक कलाओं का मंचन तो पुराने समय में कितना हुआ करता था, और साथ ही जो गांव के कारीगरों को भी अपनी मेहनत को बेचने का ये मौका सबसे बढ़िया मिलता था।
1: बिल्कुल, और जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं और जो हमारे बुनकर हैं, लकड़ी के खिलौने गढ़ने वाले जो कारीगर हैं, भाई पूरे साल इन्हीं मेलों के इंतजार में तो रहते थे, क्योंकि उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा यहीं से आता था। यानी ये छोटे छोटे मेले गाँव की अर्थव्यवस्था की एक अहम कड़ी हुआ करते थे।
0: देखो, भारत में तो कुछ मेलों का इतिहास सदियों नहीं बल्कि हजारों साल पुराना माना जाता है। जैसे राजस्थान का पुष्कर मेला सदियों पुराना ऊंट मेला है जो हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है, और आज भी दुनिया भर के लोग इसे देखने आते हैं। इसी तरह बिहार का सोनपुर मेला जिसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है, एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़े पशु मेलों में गिना जाता है ये मेला।
1: और जो अब देखो आपने कहा था ना भाई सवेरे थोड़ा थोड़ा ठंडक सी जो महसूस हो रही है, तो अब हमें मेलों की भी याद आने लग गई। और भाई हमारे जो हरियाणा का सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी आएगा, और बहुत खूबसूरत वो मेला होता है, कुशल कारीगरों को मंच देने के लिए वो शुरू किया गया था।
0: और आपको एक बात बताऊं कि इस मेले में देश के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के भी हजारों शिल्पकार

0: और लाखों दर्शक पहुंचते हैं। और इसी तरह मेरठ का नौचंदी मेला तो आपको याद ही होगा, और अभी देखो नवरात्रे आने वाले हैं, नवरात्रों में नरी सैमरी का मेला लगता है, कैला देवी का मेला लगता है और करौली का मेला भी बड़ा प्रसिद्ध मेला है।
1: वही श्रुति, वक्त के साथ इन मेलों का स्वरूप भी बदल गया है। पहले जहाँ ये छोटे कस्बों और गांवों का सामाजिक केंद्र हुआ करते थे, वहीं आज जो ये मेले हैं ना, बड़े संगठित आयोजन और प्रदर्शनी का रूप ले चुके हैं, जहाँ जो कारीगर हैं वो सीधे बड़े बाजार और खरीदारों तक पहुँचने का उन्हें मौका मिलता है।
0: देखो फिर भी उनकी आत्मा वही पुरानी है, आज भी अगर मौका मिले तो किसी नजदीकी मेले में जाकर वो पुराना अनुभव फिर से जिया जा सकता है कि नहीं।

0: अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे थे, फिल्म थी राजा रानी।
1: और मेलों से हम वापस आते हैं अपने घर की ओर। जो
0: हाँ,
1: मीठा आप पूछ रही थी ना श्रुति जी, तो जवाब आ चुका है हमेशा की
0: बल्कि
1: तरह।
0: बल्कि मैं कहूंगी मेलों से मेलों पर आते हैं।
1: जी मेलों से मेल पर आते हैं। तो
0: जी
1: पहली मेल आ गई है नवीन भाटिया जी
0: जी
1: मोतीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कह रहे हैं कि हमें पसंद है भाई बेसन के लड्डू, बहुत बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं बेसन के लड्डू को नवीन भाटिया जी। आगे
0: देखो, मेरे पास भी एक मेल आई है। ये आई है डॉक्टर राजेश्वर राव जी की। ये लिखते हैं कि हम तो पायसम बनाने में बड़ा मजा आता है, और जिसे हिंदी में खीर कहते हैं, विद ड्राई फ्रूट्स। और पायसम में तो और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं और बड़ी स्वादिष्ट होती है पायसम खाने में।
1: और हमारे साथ जुड़ गए हैं उमेश कुमार ख्याला से, और लिख रहे हैं कि त्योहारों पर हलवा बनाते हैं और प्रोग्राम और गाने जो है वो साथ में होते हैं, तो भाई अब बहुत अच्छा लगता है हमें। भाई क्या बात है, मीठे मीठे गीतों और मीठा मीठा हलवा, तो भाई ये तो जबरदस्त एक जोड़ी बन
0: और
1: जाती है।
0: और देखिए, हलवा किसी और के यहाँ भी बनाया जाता है। ये है सुदर्शन मुखी जी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से।
1: अच्छा,
0: ये लिखते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो सूजी का हलवा और दूध की खीर बनती है।
1: भाई क्या बात है, भाई हम तो कहते हैं ना ये दिल है देसी। जो देसी खाने में जो मजा है अपना, जो भारतीय खान पान है वो गजब है। और एक और मेल आया है शशि भूषण आदर्श नगर दिल्ली से, कह रहे हैं कि मीठे में खीर बनाते हैं, तो वही देखिए दिल है देसी बिल्कुल, है ना।
0: और देसी अगर दिल है तो गाना भी देसी होना चाहिए ना।
1: तो ऐसे ही खत लिखते रहिए, मेल लिखते रहिए और जुड़े रहिए एफएम गोल्ड के साथ।

0: देखिए रश्मि जी, कितना प्यारा गीत अभी हमने श्रोताओं को सुनाया, और ये गीत था फिल्म आए दिन बहार के, इस फिल्म से हमने लिया था, और गायिका थी आशा भोसले। और क्या हुआ रश्मि जी, एक मैं आपसे एक वाकया वो करना चाहती थी साझा। पिछले हफ्ते मैं ना घर की सफाई कर रही थी और एक दराज खुली तो उसमें न जाने कितने पुराने चार्जर और दो खराब मोबाइल पड़े हुए थे। तभी ख्याल आया कि ऐसा तो शायद हर घर में होता होगा
1: जी। और ये जो पुराना जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है ना, इसको कहा जाता है ई कचरा, और भारत में इसके सुरक्षित निपटान के लिए ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाए गए हैं। और इन नियमों के तहत हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है श्रुति, कि वो पुराना मोबाइल और पुरानी बैटरी या खराब उपकरण सामान्य कूड़े में ना फेंके जी।
0: और सबसे अच्छा तरीका यही है कि इन्हें अधिकृत ई वेस्ट

0: कई मोबाइल कंपनियां और शोरूम भी आजकल तो पुराना फोन वापस लेने की सुविधा दे रहे हैं। और एक्चुअली इन जो उपकरणों में हानिकारक तत्व होते हैं जो अगर मिट्टी और पानी में मिल जाएं तो सेहत को बड़ा नुकसान साबित हो सकता है।
1: और देखिए जो पुराना सामान जो होता है ना वो कबाड़ी वाले को दे दिया जाता है, वो भी हम कहेंगे तो वो सही नहीं होता, क्योंकि ये असंगठित जो बाजार में इन्हें बिना किसी सुरक्षा के लिए अगर तोड़ा जाता है तो ये खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए जब अगली बार अपने घर से श्रुति कोई पुराना मोबाइल या बैटरी निकाले तो भाई थोड़ी सजगता जरूर रखें और उन्हें आप सही जगह पहुंचाएं, ये मेरी आपसे प्रार्थना है।
0: और मेरी प्रार्थना ये है कि अगला गीत सुने।

0: शर्मीली फिल्म में अभी आप किशोर कुमार और लता मंगेशकर को सुन रहे थे।
1: जी
0: रश्मि, आज सुबह जब चाय बनाते वक्त शहद की शीशी मेरे हाथ में आई ना, मैं शहद वाली चाय पीती हूँ, तो एक पुराना सवाल मेरे मन में कौंधा। आपको पता है कि मिस्र में हजारों साल पुराना शहद मिला है, वो आज भी खाने लायक है।
1: अच्छा श्रुति, ये ना इस बड़ा दिलचस्प विज्ञान है इसके पीछे। दरअसल क्या होता है, शहद में ना पानी की मात्रा बहुत कम होती है और ये हवा से नमी खींचने का गुण रखता है, जिसमें बैक्टीरिया के लिए जीवित रहना बिल्कुल असंभव हो जाता है।
0: हाँ, तभी तो शहद का जो पीएच स्तर है ना, वो काफी अम्लीय होता है और लगभग 3 से 4.5 के बीच, जैसे नींबू के रस में होता है, वो भी तो अम्लीय माना जाता है। तो इस माहौल में ज्यादातर जो सूक्ष्म जीव हैं वो पनप ही नहीं पाते।
1: और इसके अलावा श्रुति, मधुमक्खियां जो हैं वो शहद बनाते समय एक एंजाइम भी छोड़ती हैं, जिसमें हल्की मात्रा में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, और ये भी एक प्राकृतिक कीटाणुनाशक की तरह काम करता है।
0: यही तो वजह है कि हमारी नानी दादी हमेशा कहा करती थी कि शहद को कभी फ्रिज में मत रखो, बस उसे तो कस के बंद करके बर्तन में।
1: क्या बात है श्रुति, आज तो मीठा मीठा, बिल्कुल मीठे मीठे गीत सुना रहे हो, मीठा बनवा रही हो और शहद के बारे में बता रही हो।
0: एक काम करते हैं, मीठा नहीं, आपको थोड़ा खट्टा मीठा एहसास दिला देते हैं इस गीत से।
1: जी।

0: खट्टा मीठा फिल्म में अभी आप किशोर कुमार और उषा मंगेशकर को सुन रहे थे।
1: और श्रुति, घर की दहलीज पे जो है गणपति बप्पा जब अपने धाम लौटने की तैयारी करते हैं ना, तो सच बताऊं हर और एक खामोश सी उदासी और एक ना भीनी सी मुस्कान ना दोनों साथ साथ उतर आती हैं। तो बप्पा की विदाई का दिन बस आने ही वाला है और जो लोग दो दिन तीन दिन के गणपति रखते हैं वो लोग भी लगातार उनकी विदाई कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, इस विदाई को कैसे भव्य बनाया जाए, दिव्य बनाया जाए और साथ ही धरती के प्रति जिम्मेदारी भी हम अपनी निभाई जाए, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल। और देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये विसर्जन नदी या तालाब में सीधे करने की जगह अब कई शहरों में नगर निगम ने कृत्रिम कुंड और मोबाइल टैंकों की व्यवस्था की है, जहां विसर्जन करने से नदी का जल जो है वो भी शुद्ध रहेगा और विधि विधान भी पूरा हो पाएगा।
1: जी, और अगर जुलूस की बात करें श्रुति, तो भाई ढोल ताशे भजन और कीर्तन से माहौल को इतना ही उत्सवी बनाया जा सकता है। बस ध्यान देना ये है कि रात 10 बजे के बाद आप लाउडस्पीकर की आवाज थोड़ी सी धीमी कर दें ताकि किसी को तकलीफ ना हो। और जो फूल माला हम बड़े प्रेम से चढ़ाते हैं, नारियल जैसी जो पूजा सामग्री हो उसको पानी में बहाने की जगह जो निर्माल्य है, निर्माल्य कलश में डाला जाए। और सच बताऊं बहुत सी जगह ना इसे खाद बनाने के लिए भी काम में लाया जाता है।
0: ठीक कह रही हो, यानी बप्पा का प्रसाद धरती के लिए भी वरदान बन सकता है। जो कल बप्पा की विदाई करें तो दिल में धरती के लिए भी उतनी ही श्रद्धा रखें, उतनी ही सच्चाई और उतनी ही भव्यता और दिव्यता से गणपति को विदाई दें
1: जी, और ताकि वो अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: साथ दो लोग और जुड़ गए हैं, राजू अग्रवाल, केशव प्रियांशी, विवेक चौधरी। वैसे कहते हैं जो भी खाना बना हो लेकिन जरूरी ये है कि वो बाजारी खान पान से जो है रसायनों से मुक्त हो। और साथ में गौरीशंकर जी जुड़ गए हैं रोहतक से, कह रहे हैं कि भाई खसखस का हलवा या पोस्त का हलवा उसको रात को भिगो दें और सुबह सिलबट्टे पर पीस कर बादाम मिला दें और दिमाग के लिए दवाई का काम करता है और दूध भी डालना पड़ता है, पूरी सर्दी ये खाएं और रोजाना और सुबह शरीर के में ताकत का भी काम करता है। शुक्रिया गौरीशंकर जी।
1: और देखो रश्मि, इन सारी बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। हाँ, हम अपने श्रोताओं के जवाब भी हम भूले नहीं, हमने सभी श्रोताओं को जवाब दिए हैं। और लेकिन श्रोता हमें मेल करते रहे, हमें पूरी उत्सुकता से इंतजार रहेगा। तो अब इस घर आंगन में थोड़ा सा सुस्ताना चाहिए कि नहीं?
0: पर ये आंगन सुना नहीं होगा क्योंकि इसमें आपकी यादें हैं और हम इसी के साथ इजाजत लेते हैं जाने की। और साथ में कहते हैं
1: कि आप सभी को बहुत सारा स्नेह हमारी तरफ से, बहुत सारी शुभकामनाएं आने वाले त्योहारों की। और हम फिर से इस घर आंगन में आपको मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। मुझे श्रुति बुरी
0: और रश्मि कुकृति को दीजिए आज्ञा। नमस्कार
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों न पहुंच जाए। श्री मोदी ने गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान संवाद में ये बात कही।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव भी साझा किए। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, जर्मनी के विदेश मंत्री योहान डेविड वाडेफुल और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु शामिल हुए। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक।

हो गया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। बैठक में सहयोग मंच के शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा हुई। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सहमेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया था। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना में मृतकों के निकट परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जापान एशियाई खेलों में अनंत जीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने 44 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले रोशिबीना देवी नाउरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही टीम का पदक भी सुनिश्चित हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: शहर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहे हैं?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दोस्तों, दूर का राही की कहानी के केंद्र में है प्रशांत, जिसका किरदार किशोर कुमार जी ने निभाया। प्रशांत एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने निजी जीवन की सीमाओं से निकलकर समाज और इंसानियत की तलाश में आगे बढ़ता है। वह एक जगह टिकने वाला इंसान नहीं है, उसका जीवन जैसे एक लगातार चलने वाली यात्रा है। वह लोगों से मिलता है, उनके जीवन को देखता है, उनकी परेशानियों को समझता है और इस पूरी यात्रा में खुद भी जिंदगी के कई सवालों के जवाब तलाशता है। फिल्म का मूल भाव सिर्फ घटनाओं में नहीं बल्कि इंसान के भीतर चलने वाली भावनाओं और संघर्ष में दिखाई देता है। साथियों, यही वजह है कि दूर का राही को केवल एक सामान्य मनोरंजन फिल्म के रूप में नहीं देखा जाता। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो जीवन को दूर से देखता है और फिर भी उसके हर दर्द को अपने बहुत करीब महसूस करता है।

श्रोताओं, किशोर कुमार के बारे में हम अक्सर कहते हैं महान गायक, लेकिन किशोर कुमार की प्रतिभा सिर्फ गायकी तक सीमित नहीं थी। साथियों, वह अभिनेता भी थे, निर्माता भी, निर्देशक भी और संगीतकार भी, और अपनी फिल्मों को लेकर उनका अंदाज भी बेहद अलग था। दूर का राही इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। इस फिल्म में किशोर कुमार ने प्रशांत की मुख्य भूमिका निभाई और इसके साथ साथ निर्देशन, निर्माण और संगीत की जिम्मेदारी भी खुद संभाली। यानी कैमरे के सामने भी किशोर कुमार और कैमरे के पीछे भी साथियों किशोर कुमार। यह बात इस फिल्म को और भी खास बना देती है। साथियों, दूर का राही का संगीत भी किशोर कुमार की अपनी रचनात्मक दुनिया को दिखाता है। फिल्म के साउंड ट्रैक में 8 गीत दर्ज हैं और इनमें किशोर कुमार के साथ हेमंत कुमार, मन्ना डे, अमित कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाजें सुनाई देती हैं।

दोस्तों फिल्म के कलाकारों की बात करें तो किशोर कुमार के साथ थी तनुजा और अशोक कुमार इस फिल्म को और भी खास बना देते हैं। तनुजा ने मोनिका का किरदार निभाया जबकि अशोक कुमार ने जोसेफ की भूमिका निभाई थी। फिल्म में अभी भट्टाचार्य, इफ्तिखार, आशीष सेन, पद्मा खन्ना, कैस्ट्रो मुखर्जी और कई अन्य कलाकार भी दिखाई देते हैं। साथियों अशोक कुमार और किशोर कुमार का रिश्ता भी हिंदी सिनेमा में बेहद खास रहा। दोनों भाई थे और दोनों ने अपने अपने तरीके से भारतीय सिनेमा में अपनी पहचान बनाई थी। एक तरफ अशोक कुमार को हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर के महान अभिनेताओं में गिना जाता है तो दूसरी तरफ किशोर कुमार ने अभिनय, गायकी और संगीत के क्षेत्र में अपनी अलग दुनिया बनाई। दूर का राही में दोनों का साथ होना अपने आप में ही फिल्म प्रेमियों के लिए एक खास बात है।

साथियों, आज जब हम रंगीन फिल्मों और शानदार विजुअल इफेक्ट्स के दौर में हैं, तब 1971 की इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म को देखना अपने आप में एक अलग अनुभव होता है। साथियों, दूर का राही को ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के रूप में दर्ज किया गया है। उस दौर में कहानी, अभिनय, संवाद और संगीत ही फिल्म की असली ताकत हुआ करते थे, और शायद दोस्तों इसीलिए दूर का राही जैसी

साथियों, इस फिल्म के गीत आज भी हमें यही याद दिलाते हैं कि जिंदगी एक सफर है। कभी आसान है, कभी मुश्किल, कभी अकेला, लेकिन सफर हमेशा जारी रहता है।

दोस्तों समय कह रहा है आपसे अनुमति लेने के लिए, तो इजाजत दीजिए अपनी दोस्त शिल्पा गोस्वामी को। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और लीजिए आप सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेवा जीवन का मुख उद्देश अते सुभा च होनी चाहिए है। भारत समेत G4 विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल दे जल्द सुधार की लोड़ ते जोर दिता है। केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत का समुद्री खेतर देश की तरक्की लई एक मजबूत नींह है। भारतीय हवाई फौज मुखी एयर चीफ मार्शल AP सिंह वालों रणनीतिक तौर पर अहम उत्तरी कमांड खेतर का दौरा से मौजूदा सुरक्षा स्थिति और फौजी तैयारियों का लिया गया जायजा। भारत की मर्दा की टीम अपने आखिरी ग्रुप ए मैच में चीन 37-21 नाल हरा के एशियाई खेडा विच कबड्डी मुकाबले के सैमीफाइनल विच पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख उद्देश होनी चाहिए अते ए हर व्यक्ति के सुभा च होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति विच भी सेवा मार्गदर्शक सिद्धांत बनी रहनी चाहिए भावे कोई उच्चे अहदे ते पहुंच जावे। श्री मोदी ने यह गल वडनगर तो वाराणसी तक यात्रा ते जा रहे सेवा यात्रियों नाल एक वर्चुअल गलबात दौरान कही। प्रधानमंत्री ने सेवा परमो धर्म भाव सेवा सब तो वड्डा फर्ज है, मार्गदर्शक सिद्धांत रहना चाहिए।
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले।

0: कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि सेवा सब तो वड्डी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि भावें पीएम किसान होवे जां पीएम सूर्यघर योजना, अणगिणत अजिहियां योजनावां

0: Network, the EIR News website, and the News on EIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of EIR News, DD News, the PMO, and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. The government has reduced the basic customs duty, BCD, on major imported crude edible oils with a view to moderating domestic edible oil prices. This provides relief to consumers, mitigating inflationary pressures arising from the sharp increase in international edible oil prices. Defending champions India have stormed into the men's Kabaddi semi-finals with a convincing 37-21 victory over Chinese Taipei in their final Group A fixture at the Asian Games 2026 in Japan. India dominated from the outset, taking a commanding 23-11 lead at halftime and maintaining their advantage in the second half, which they won 14-10. The victory was India's fourth consecutive win in the group stage. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi highlights service as the main purpose of life, says Seva Parmo Dharma should remain the guiding principle. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chairs meeting of Forum for India-Pacific Islands Cooperation Foreign Ministers on the sidelines of 81st United Nations General Assembly in New York. Government says India is manufacturing nearly 99.2% of the country's total domestic demand for mobile phones. Red alert issued for very heavy rainfall over West Bengal, Telangana, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh and Odisha today. And India storm into men's Kabaddi semi-finals after beating Chinese Taipei in final Group A fixture at Asian Games in Japan. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया, कहा सेवा परमो धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने कहा भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% हिस्सा स्वयं बना रहा है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स्ड निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम आखिरी ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य सेवा हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आज वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम छोर तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है।
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए। एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
1: श्री मोदी ने कहा कि सेवा की भावना से ही 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल सके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सेवा की भावना देश की नीतियों में शामिल होती है तो ऐसी योजनाएं सामने आती हैं जिनसे 25 करोड़ लोगों को गरीबी

0: से बाहर निकलने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति चुनाव और शासन व्यवस्था का अपना महत्व है, लेकिन देश के निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करना है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया।
1: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है, उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी सात धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
0: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधरोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग स्वच्छता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान 6.0 चलाएगा। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, लंबित मामलों का तेजी से निपटान करना और शासन में सुधार करना है। ये अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जन सेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जन सेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा है।
2: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, लचीला और विद्यार्थी केंद्रित बनाना है। इसके तहत उच्च शिक्षा में विषय के चयन में विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्रता, बहुविषयक अध्ययन, कौशल विकास, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश भर में लागू करने की दिशा में ओडिशा भी लगातार आगे बढ़ रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च शिक्षा संस्थानों में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का ध्यान विद्यार्थियों को पारंपरिक डिग्री के साथ साथ रोजगार और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इसके अलावा भारतीय भाषाओं, स्थानीय आवश्यकताओं और तकनीकी शिक्षा को भी नई शिक्षा व्यवस्था में जोड़ने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ शोध और नवाचार के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन और उच्च शिक्षा में इसके प्रभाव को लेकर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहते हैं,
3: 2024 में नई सरकार गठन होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने संरचनात्मक और शैक्षणिक सुधार के लिए हमेशा प्राथमिकता दिया है। कौशल विकास और उद्योग संपर्क के लिए AEDP, अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम, नास्कम, फ्यूचर स्किल, कोर्सेरा जैसे कार्यक्रम को अपनाए हैं। इंटर्नशिप बहुत अच्छी तरीके से उड़ीसा में हो रहा है।
2: राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन केवल पाठ्यक्रम में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और अवसरों से सशक्त बनाना है। ओडिशा में नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से लागू करते हुए उच्च शिक्षा को बेहतर और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। भुवनेश्वर से दीपक कुमार बेहरा के साथ मैं इतिश्री सिंह राठौर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट @AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
5: बैठक में FIPIC शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा की गई और भारत तथा प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग में हुई प्रगति का स्वागत किया गया। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2023 में घोषित 12 सूत्रीय कार्य योजना के तहत हुई प्रगति भी शामिल है।

0: नेताओं ने नवीनीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्यवाही, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। बैठक में समाओं के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तथा फिजी, मार्शल द्वीप समूह, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप समूह और तुवालू के विदेश मंत्री शामिल हुए। टोंगा के वित्त मंत्री ने भी बैठक में भाग लिया। इसके अलावा माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों के न्याय विभाग के सचिव और अटॉर्नी जनरल, वानुअतु के स्वास्थ्य मंत्री, नाउरू के उप विदेश मंत्री तथा प्रशांत द्वीप मंच के महासचिव भी बैठक में उपस्थित थे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में यह अभियान शुरू किया गया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि भारत में मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% विनिर्माण होता है। नई दिल्ली में आज 13वें वार्षिक पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के उद्घाटन सत्र में श्री कृष्णन ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 32 से 33 करोड़ मोबाइल फोन विनिर्मित होते हैं।
2: हम देश में अपनी कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% खुद तैयार करते हैं। भारत में होने वाला मूल्यवर्धन जो लगभग 7-8 साल पहले करीब 10-15% था, अब वो बढ़कर लगभग 22-23% हो गया है। हमारा लक्ष्य 35-40% के बीच मूल्यवर्धन हासिल करना है। इस उद्योग को देश में ही बनाए रखने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है।
1: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ साथ आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दक्षिणी तट को पार कर गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कई स्थानों पर जलभराव और बाढ़ की स्थिति बन गई है।
4: कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा के तट को पार करने के बाद गहरा डिप्रेशन जमीन के अंदर की ओर बढ़ गया है और धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। उड़ीसा में इसका असर अभी भी महसूस किया जा रहा है। आज कोरापुट, नवरंगपुर, मालकानगिरी, कलाहंडी, नुआपड़ा, बलांगीर और बरगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश और कल व परसों बहुत भारी बारिश

0: के साथ साथ आंधी तूफान बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है, जबकि भूस्खलन के खतरे के कारण NH-157 का कलिंगा घाट वाला हिस्सा बंद कर दिया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: और अब एशियाई खेलों की आज की अपडेट के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी में मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने 44 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले रोशिबिना देवी नाओरेम ने वुशू में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। रोशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शियायोउ से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने 6:13.25 का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ग्रुप ए के मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में भी प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही टीम का पदक भी पक्का हो गया है। अब पदक तालिका में भारत के कुल पदक की संख्या 15 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया। कहा, सेवा परमो धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने कहा, भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% हिस्सा स्वयं बना रहा है और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: नेशनल न्यूज सर्विस कना प्रोग्राम पिन मीडियम आकाशवाणी करगिली कना जरिनोत वक्स पुतुसोत 19 मिनट सुमचू सोसु कसता स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम चिंगन मजद उमंग

0: संबंध।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं आपकी मित्र विमलेश उमंग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं।
3: और मैं आपका मित्र अजीत आप सबों को उमंग कार्यक्रम की ओर से जोहार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। विचार शिक्षा के बारे में है, लिखते हैं,
2: शिक्षा ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास कर सकती है।
3: जी, इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से, प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
2: राजानगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद।
3: तो श्रोताओ, हम कहना चाहते हैं कि आपके संदेश हमारे लिए हमेशा प्रोत्साहन का कारण होते हैं।
2: जी।
3: पुनः धन्यवाद। निवेदन है कि इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: जी,
3: आइए अब चलते हैं आविष्कार की एक और बेहद रोचक और मजेदार कहानी में।
2: श्रोताओ, अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारी जिंदगी में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम ये सोचते भी नहीं है कि कभी उनका भी आविष्कार हुआ होगा। नजर दौड़ाइए ना अपने चारों ओर, आप पाएंगे कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो चलिए अब बढ़ाते हैं चर्चा को आगे।
3: तो आज हम बात करेंगे बॉल पेन के बारे में।
2: जी।
3: वही बॉल पेन जो अक्सर हमारे हाथों में मिलता है। आप सोच रहे होंगे भला बॉल पेन में ऐसी क्या कहानी हो सकती है, छोटी सी कलम ही तो है बस।
2: लेकिन श्रोताओ, कई बार हम महसूस ही नहीं कर पाते कि जिस चीज को हम मामूली समझते हैं उसके पीछे कभी कभी पूरी दुनिया की मेहनत छिपी होती है। जरा सोचिए, अगर आज हमारी जेब में बॉल पेन न हो तो कितनी मुश्किल हो जाए।
3: आपको याद होगा कि पहले लिखने के लिए फाउंटेन पेन हुआ करते थे, जिन्हें हम कलम भी कहते थे। उन दिनों समस्या ये थी कि पुराने समय

0: की कलमें अक्सर आसानी से नहीं चलती थी
1: जी।
0: फाउंटेन पेन में स्याही भरनी पड़ती थी, स्याही फैल सकती थी, वो रिस भी सकती थी, कपड़ों में भी लग सकती थी। एक बड़ी समस्या ये भी थी कि फाउंटेन पेन की लिखाई जल्दी सूखती भी नहीं थी। लिखते समय निब को भी संभालना पड़ता था, और तो और गिर जाने पर निब के टूट जाने का भी डर लगा रहता था, यानी समस्या पर समस्या।
1: तो श्रोताओं, वैज्ञानिकों और आविष्कारों के मन में सवाल था, क्या ऐसी कलम बनाई जा सकती है जिसमें स्याही अपने आप नीचे आए लेकिन रिसे नहीं, साथ ही साथ निब भी न टूटे। और यहीं से शुरू होती है हमारे बॉल पेन के आविष्कार की रोचक यात्रा।
0: तो श्रोताओं, हुआ ये कि 20वीं सदी के आरंभ में कई लोगों ने ऐसी कलम बनाने के प्रयोग किए
1: जी,
0: लेकिन सफलता आसान नहीं थी। यहीं से इस कहानी में प्रवेश होता है हंगरी के पत्रकार और आविष्कारक लाज़लो बायरो का। उन्होंने ध्यान दिया कि अखबार छापने वाली मशीन की स्याही जल्दी सूख जाती है। एक विचार उनके मन में कौंधा
1: जी,
0: अगर यही जल्दी सूखने वाली स्याही कलम में इस्तेमाल की जाए तो। विचार तो अच्छा था, लेकिन
1: एक नई समस्या सामने आई। वो ये थी कि स्याही फाउंटेन पेन की पतली निब से आसानी से नहीं निकलती थी। फिर लाज़लो बायरो ने सोचा, स्याही को निब से निकालने के बजाय क्यों न एक छोटी सी गेंद के सहारे कागज पर पहुंचाएं? और उन्होंने एक बहुत ही छोटी गेंद बनाई
0: जी। कल्पना कीजिए श्रोताओं, जब गेंद कागज पर घूमती तो वह स्याही को अपने साथ लेकर आती और कागज पर छोड़ देती
1: जी,
0: यानी गेंद घूमती जाती और उसके आगे आगे शब्द बनते जाते
1: जी।
0: यही तो है नवाचार।
1: कलम की अगली नोक या पॉइंट पर एक बेहद छोटी गेंद। इस छोटी गेंद यानी बॉल के कारण नाम पड़ा बॉल पॉइंट पेन। बायरो और उनके भाई जॉर्ज बायरो ने सन 1938 में अपने बॉल पॉइंट पेन का पेटेंट कराया।
0: और श्रोता मित्रों, उसके बाद जो हुआ ना वो इतिहास है। स्कूल के बच्चों से लेकर बड़े अधिकारी तक सबके हाथ में अब बॉल पेन दिखने लगी
1: जी।
0: इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान था, ढक्कन खोलिए, कागज पर रखिए और लिखना शुरू कर दी।
1: बिल्कुल,
0: न स्याही की दवा चाहिए और न निब को बार बार स्याही में डुबोने की झंझट
1: जी। आज बॉल पेन के अंदर एक पतली सी स्याही की एक ट्यूब होती है और सबसे आगे एक बहुत छोटी गेंद। जब हम लिखते हैं तो नन्ही गेंद घूमती है और स्याही को नियंत्रित मात्रा में कागज पर पहुंचा देती है। वाह, एक नन्ही सी गेंद ने लिखने की दुनिया ही बदल दी
0: जी। एक नन्ही सी गेंद ने लिखने की दुनिया ही बदल दी। तो साथियों, याद रखिएगा, आज जब हम परीक्षा देते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, नोट्स लिखते हैं और फॉर्म भरते हैं, उस समय हमारी उंगलियों के बीच चुपचाप चलती है वही तकनीक जिसे बायरो ने लगभग एक सदी पहले विकसित किया था।
1: तो ये थी हमारी आज की जानकारी, आशा है आपको अच्छी लगी होगी। प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा प्रश्न है कि बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था और वे किस देश के थे। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था और वो किस देश के थे। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है समझदारी।
1: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि समझदारी इसी में है कि यदि हम एक दूसरे के साथ सहयोग और भाईचारे की भावना से रहें तो इसी में सबकी भलाई है।
0: समझदारी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ।

0: रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
1: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
0: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
1: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
0: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
1: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
0: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
1: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
2: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
1: मश्क।
3: होशियार,
1: समझदार।
3: पेंसिल तराश,
1: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
3: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
1: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
3: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी।
0: झटपट झटपट कुछ अनूठे खेल, सब मिलकर बनाए हम अक्षरों की।

0: और अब आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम। शीर्षक है, असफलताएं भी शिक्षक होती हैं।
1: प्रेरक प्रसंग श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में बताया गया है, किस प्रकार उन्होंने बिजली के बल्ब के आविष्कार के क्रम में कई बार असफलताओं का सामना किया और उनसे हतोत्साहित नहीं हुए, लेकिन उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार किया।
2: नमस्कार साथियों,
3: प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक प्रसंग।
2: तो आइए सबसे पहले पूछते हैं एक पहेली, जरा बताइए तो वो कौन है?
3: उन्हें दुनिया में सबसे अधिक आविष्कार करने और उनका पेटेंट लेने का श्रेय प्राप्त है।

0: उन्होंने लगभग 1300 आविष्कार किए। जरा सोचिए, सोचिए, सोचिए।
1: साथियों, यदि आपके मन में थॉमस एडिसन का नाम आ रहा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है।
0: जी हाँ, वो महान आविष्कारक और वैज्ञानिक हैं, थॉमस अल्वा एडिसन। उन्हें मुख्य रूप से बिजली

0: सैमुअल एडिसन की सातवीं संतान थे।
1: बचपन से ही वो बहुत ही जिज्ञासु थे। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वो शिक्षकों से अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिया करते थे जिनका जवाब देना कठिन होता था। शिक्षक और सहपाठी उन्हें शरारती और मूर्ख समझते थे।
0: एक दिन की बात है, शिक्षक ने बालक एडिसन को बुलाया और उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा कर कहा,
2: अपनी माँ को ये चिट्ठी दे देना।
0: भोले भाले बच्चे ने वो चिट्ठी ली और घर पहुंचकर अपनी माँ को दे दी।
3: माँ, ये चिट्ठी।
0: माँ ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वो चिट्ठी अलमारी में रख दी।
1: दूसरे दिन से एडिसन फिर कभी स्कूल नहीं गए। वो घर पर ही पढ़ाई करने लगे। एक बार उन्होंने अपनी माँ से पूछा,
3: माँ, आप मुझे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो? क्या अध्यापक ने चिट्ठी में कुछ लिखा है?
1: बेटा एडिसन, उन्होंने ये कहा कि आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है।
3: अच्छा,
1: इसलिए वो हमारे विद्यालय के लायक नहीं है। क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो ना।
3: अच्छा,
1: उनको लगता है कि उनके विद्यालय में तुम्हारी प्रतिभा वैसी नहीं निखर पाएगी जैसी कि आशा की जाती है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। साथियों, उनकी माँ स्वयं एक शिक्षिका थी और वो जानती थी कि ये बच्चा मानसिक रूप से कमजोर नहीं है। उन्होंने एडिसन को घर पर ही पढ़ाया। वो एडिसन के सभी प्रश्नों का उत्तर यथासंभव देने की कोशिश करती और प्रारंभ में उन्हें बुनियादी साक्षरता के साथ साथ अंकगणित पढ़ाया। उन्हें विशेषकर विज्ञान में बहुत रुचि थी।
0: उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़े होने पर काम करना शुरू किया और परिवार की सहायता भी करने लगे। अमेरिका के डेट्रॉइट शहर के रेलवे स्टेशन पर उन्होंने अखबार और चॉकलेट बेचने का काम किया।
1: रेल के डिब्बे में ही उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली थी। एक बार की बात है, वो रेल के डिब्बे में ही कुछ रासायनिक प्रयोग कर रहे थे कि फास्फोरस के गिर जाने के कारण वहां आग लग गई, भगदड़ मच गई।
0: इतने में रेल अधीक्षक वहां भागा भागा आया और जब उसने सारा माजरा देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने एडिसन को एक जोरदार थप्पड़ मारा जिसके कारण वे हमेशा के लिए आंशिक रूप से बहरे हो गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ना व प्रयोग करना जारी रखा। उनकी माँ उन्हें पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें देती और प्रोत्साहित करती कि वे जितना अधिक हो सकता है अवश्य पढ़ें। थॉमस एडिसन के मन में पढ़ने की अदम्य इच्छा उनकी माँ के कारण ही उत्पन्न हुई।
1: एक बार उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था,
0: मैंने यथासंभव लगभग सब कुछ पढ़ा है जो कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। मुझे पुस्तकों से अगाध प्रेम है।
1: साथियों, उनकी स्मृति में थॉमस एडिसन नेशनल हिस्टोरिकल म्यूजियम बनाया गया है। इस विशाल म्यूजियम की तीसरी मंजिल में उन किताबों का विशाल संग्रह है जो किताबें थॉमस एडिसन ने अपने जीवन काल में पढ़ी थीं। थॉमस एडिसन ने एक बार अपनी माँ के बारे में कहा था,
0: मेरी माँ ने ही मेरा निर्माण किया। वे बहुत सच्ची थीं और मुझ पर विश्वास करती थीं।
1: थॉमस एडिसन ने अपनी पहली प्रयोगशाला अपने घर पर ही उस समय बनाई थी जब वो मात्र 10 वर्ष के थे। कहते हैं कि वो बेहद

0: विश्रमी थे और अक्सर अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करते करते वो लेबोरेटरी की कुर्सी या टेबल पर ही सो जाया करते थे। समय बीता, इस बीच उनकी माँ का देहांत हो गया था। बहुत वर्ष बीते और एडिसन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सफलता की बुलंदियों को लांघते हुए विश्व प्रसिद्ध आविष्कारक बन चुके थे।
1: उनके द्वारा किए गए आविष्कारों में मुख्य रूप से कार्बन माइक्रोफोन, फोनोग्राफ, चलचित्र, ग्रामोफोन, विद्युत वोट रिकॉर्डर, विद्युत वितरण प्रणाली और बिजली का बल्ब है। बिजली के बल्ब के आविष्कार की कहानी अत्यंत रोचक है।
0: इसका आविष्कार करने के लिए थॉमस एडिसन को सैकड़ों बार असफलता का सामना करना पड़ा। शुरू में कई बल्ब चले, लेकिन कुछ ही सेकंड्स या मिनट में टूट गए। लेकिन एडिसन ने जैसे हार मानना सीखा ही नहीं था।
1: अथक परिश्रम और सतत प्रयोगों के बाद अंत में 1889 में उन्हें बिजली का बल्ब बनाने में सफलता हाथ लगी। पहला बिजली का सफल बल्ब लगभग 40 घंटों तक जला। 1880 में उन्होंने इसमें और अधिक सुधार किया और अब ये महीनों तक लगातार जल सकता था।
0: जब बिजली के बल्ब का आविष्कार हुआ तो सारे अमेरिका में तहलका मच गया। लोगों के लिए ये किसी अजूबे से कम नहीं था। दूर दूर से लोग इस बल्ब को देखने के लिए आते थे। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बेंजामिन हैरिसन ने इस महान आविष्कार के लिए उनका विशेष रूप से अभिनंदन किया और उनसे निवेदन किया कि वो अमरीकी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास व्हाइट हाउस को बिजली के बल्बों से जगमगा दे।
1: एक बार की बात है, उनके सम्मान में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बहुत से पत्रकार जमा थे। एक पत्रकार ने पूछा,
0: मिस्टर एडिसन, बिजली के बल्ब के आविष्कार की प्रक्रिया में आप कितनी बार असफल हुए?
2: लगभग 10,000 बार।
0: 10,000 बार?
2: लेकिन मैं उन्हें असफलता नहीं कहूंगा।
0: अच्छा,
2: मैं कहूंगा कि मैंने 10,000 उन तरीकों को खोजने में सफलता पाई जिनसे बिजली का बल्ब बनाया नहीं जा सकता था।
0: अरे वाह।
2: वे दरअसल 10,000 स्टेप्स थे जिन्हें तय करके मैं सफलता तक पहुंचा।
0: क्या बात है। तो साथियों, ये था असफलताओं के प्रति थॉमस एडिसन का दृष्टिकोण। उन्होंने अपनी असफलताओं को भी बहुत सकारात्मक ढंग से देखा। अपने बहरेपन के बारे में एक बार उन्होंने विनोदपूर्ण ढंग से कहा था,
2: मैं ठीक से सुन नहीं पाता हूँ, इसके मुझे 2 लाभ मिलते हैं। पहली बात, लोग मेरे पास आकर व्यर्थ की बात नहीं करते, और दूसरी बात, इसके कारण मैं पुस्तकों और वैज्ञानिक सोच को अधिक समय दे पाता हूँ।
0: एक दिन एडिसन ने पुरानी अलमारी को खोला और यूं ही कुछ देखने लगे कि तभी एक लिफाफा नीचे गिरा। एडिसन ने उसे उठाया। अरे, ये तो वही पत्र था जो उनके स्कूल के अध्यापक ने भेजा था। उन्होंने उसे पढ़ा। लिखा था,
2: डियर मिसेस एडिसन, आपका बच्चा बेहद मंद बुद्धि का है और वो कुछ सीख नहीं सकता। उसके स्कूल में होने से दूसरे बच्चों पर भी फर्क पड़ता है, इसलिए अच्छा होगा उसके लिए कोई दूसरा स्कूल देख ले या उसे स्वयं ही पढ़ा ले।
0: थॉमस एडिसन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये है किसी बच्चे के सर्वांगीण विकास में एक माता की सकारात्मक भूमिका। उन्होंने हमेशा ये बोल बोलकर कि तुम जीनियस हो, अपने बेटे का मनोबल बढ़ाया और यहां तक बढ़ाया कि थॉमस एडिसन इतिहास का स्वर्णिम हस्ताक्षर बन गए। जीवन के संघर्षों के प्रति उनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध है,
2: हम तब नहीं हारते जब हम गिर जाते या हार जाते हैं। दरअसल हम तब हारते हैं जब हम गिरकर उठने से इनकार कर देते हैं।

0: 18 अक्टूबर 1931 को वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी संयुक्त राज्य अमेरिका में 84 वर्ष की आयु में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। विश्व उनके अमूल्य योगदान को सर्वदा याद रखेगा।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम असफलताएं भी शिक्षक होती हैं।

0: और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ मुझे यानी अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग
3: दक्षा सपैंतीस स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम चिंगेन्युटपिन उमंग मीडियम इकांगाचेस आकाशवाणी करही लिखना जेन्युट वक्सपुतुसोत सुम संसुक कसता ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस करना प्रोग्राम फोचुगे रिलीला गेरबाजेट।

वर्स ये आकाशवाणी है। दोपहर के 3 बज चुके हैं। उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशात का आगाज होता है। इस मजलिस में आप तमाम सामिन का खैर मकदम है। उर्दू सर्विस की नशात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। आइए एक नजर डालते हैं इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर।

3:05 पर खबरें नशे की जाएंगी और 3:15 पर मेरी पसंद प्रोग्राम के तहत आप सुनेंगे चंद फिल्मी नगमे। सपेर 3:30 अंदाजे नजर प्रोग्राम में मुबाहिसे का मौजू है मुकाबला जाति इम्तिहान और वालिदैन की जिम्मेदारी। शाम 4:00 आप लुत्फंदोज होंगे फिल्मी मौसीकी से। फिल्मी नगमों का यह प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। शाम 4:50 पर खबरें नशे की जाएंगी और शाम 5:00 उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। ये था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशो नाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रेडेश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। दोपहर के 3:05 हुए हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, अब आप असदुल्ला से खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उजागर किया है कि खिदमत जिंदगी का असल मकसद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेवा परमो धर्मा रहनुमा उसूल होना चाहिए। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अक्वाम मुतहदा जनरल असेंबली के 21वें इजलास के मौके पर भारत बहरुल काहिल जजायर के इश्तराक से मुतालिक फोरम के वजराए खारजा की मीटिंग की सदारत की। हुकूमत ने कहा है कि भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का तकरीबन 99.2% मोबाइल फोन तैयार कर रहा है। आज मगरबी बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और दिफाई चैंपियन भारत ग्रुप ए के आखिरी मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर मर्दों की कबड्डी के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि खिदमत जिंदगी का असल मकसद होना चाहिए और हर फर्द में ये एहसास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सियासत में भी खिदमत ही रहनुमा वसूल होना चाहिए, खाह कोई भी फर्द कितने ही आला ओहदे पर पहुंच जाए। जनाब मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा करने वाले अफराद के साथ वर्चुअल वसीले से गुफ्तगू करते हुए ये बात कही। वजीर आजम ने कहा कि सेवा परमो धर्मा, खिदमत आला तरीन फर्ज है और यह हमेशा रहनुमा उसूल रहना चाहिए। गुफ्तगू के दौरान सेवा यात्रियों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ अपने तजुर्बात शेयर किए। इन लोगों ने बताया कि मुहिम के हिस्से के तौर पर उन्होंने पौधे लगाए और सफाई सुथराई की मुहिम में शामिल हुए। इन अफराद ने यह भी कहा कि सेवा यात्रा के दौरान उन्होंने आवाम से बात की और सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों के फायदों के बारे में लोगों ने मुस्बत रद्द अमल का इजहार किया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में अक्वाम मुतहदा जनरल असेंबली के 21वें इजलास के मौके पर भारत बहरुल काहिल जजायर इश्तराक FIPIC से मुतालिक फोरम के वजराए खारजा की मीटिंग की सदारत की। मजकूरा मीटिंग से FIPIC शराकतदारी और इलाकाई नीज कसीर रुखी फोरमों में इश्तराक व तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने से मुतालिक अहद का इरादा किया गया। ये FIPIC फ्रेमवर्क के तहत मुनक्किद होने वाली वजराए खारजा की दूसरी मीटिंग थी। G4 मुल्कों के भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के वजराए खारजा ने अक्वाम मुत्तहदा सलामती काउंसिल की जल्द इस्लाहात पर जोर दिया है। न्यूयॉर्क में अक्वाम मुत्तहदा के जनरल असेंबली के 21वें इजलास के मौके पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और ब्राजील, जर्मनी और जापान के वजराए खारजा की मीटिंग के बाद एक मुश्तरका वजारती बयान में उन्होंने जोर देकर कहा कि मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल दोनों जुमरों में सलामती काउंसिल की तौसी को इस्लाहात में मरकजी हैसियत हासिल रहनी चाहिए। भारत ने न्यूयॉर्क में अक्वाम मुत्तहदा जनरल असेंबली के 21वें इजलास के मौके पर मुश्तरका मेजबानी के 1SCD का आगाज किया, जो सिकल सेल की देखभाल के सिलसिले में बराबरी को फरोग देने और यकसर तब्दीली लाने से मुतालिक एक आलमी शराकतदारी है। तकरीब से खिताब करते हुए सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत की सेक्रेटरी पुनिया

मुकेश का गाया हुआ दो गाना, फिल्म है छैला बाबू, मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

ये है प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, दिल एक मंदिर, फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी का गाया हुआ। नगमा निगार हंसे जयपुरी और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: ये थी मेरी पसंद प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशात आप सुन रहे हैं मीडियम वेव से 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। अंदाजे नजर इस प्रोग्राम के तहत एक मुजाकरा सुनिए। मौजू है मुकाबला जाति इम्तिहान और वालिदैन की जिम्मेदारियां।
1: सामीन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। अंदाजे नजर प्रोग्राम लेकर एक मरतबा हम फिर हाजिर हैं। सामीन, जैसे कि आपको इल्म है कि हम इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे मौजूदात पर बात करते हैं जिन पर हमारे सामीन सुनना चाहते हैं, मालूमात हासिल करना चाहते हैं। आज हमने एक ऐसे मौजू का इंतखाब किया है जिसका ताल्लुक न सिर्फ हमारे नौजवान दोस्तों से है या उन लोगों से है जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी मुकाबला जाति इम्तहान में तैयारियां करते हैं, बल्कि इस मौजू का ताल्लुक बराह रास्त उनके वालदेन से है। आमतौर पर होता यह है कि जब हम या हमारे बच्चे कभी मुकाबला जाति इम्तहान की तैयारी करते हैं और नाकाम हो जाते हैं तो हम सारा जो ठीकरा फोड़ना कहते हैं वो टीचर या इंस्टीट्यूशन या कोचिंग सेंटर के थ्रू पे फोड़ देते हैं। यथा उनकी कहीं कमी रही थी तवज्जो में, जो बच्चा हमारा जो है कामयाब नहीं हो सके। लेकिन एक अहम सवाल यह है कि वालदेन की क्या जिम्मेदारी होती है जबकि बच्चा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो, उस दौरान वालदेन को क्या क्या जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इन तमाम मौजूदात पर गुफ्तगू के आज मेरे साथ है मारूफ माहिर तालीम जनाब शबी अहमद साहब और जनाब शमीमुद्दीन साहब। स्टूडियो में इस्तकबाल है आप लोगों का। शबी साहब, पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपसे ही सवाल किया जाए, आपको क्या लगता है कि जब मुकाबला जाती इम्तहानात होते हैं तो उसमें टीचर का कितना हिस्सा है, सोसाइटी का कितना हिस्सा है और वालिदैन का कितना हिस्सा है, और उस कैंडिडेट का, उस बच्चे का, इस नौजवान का खुद कितना हिस्सा है?
2: बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से कहानी वालिदैन से शुरू होती है। मुश्किल ये आ गई है कि जाहिर बात है कि जब हर वालिदैन, हर बाप, हर माँ अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर स्कूल में दाखिल

0: समझते हैं कि सारी जिम्मेदारी एक बार स्कूल भेज दिया, स्कूल की हो गई, कोचिंग इंस्टीट्यूट की हो गई और टीचर की हो गई, और हमें मत बुलाओ, अब आप जानो और आपका काम जाने, जबकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। भाई वो घर पे अगर पढ़ेगा, टाइम देगा, तभी तो कुछ सीखेगा ना, अब वो
1: यकीन
0: खुद सीखने को तैयार नहीं है और माँ बाप उन्हें सपोर्ट नहीं करते। मैंने ये महसूस किया है कि पर्टिकुलरली कुछ पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर कुछ के लोग जो हैं वो बच्चों को समझते हैं कि ये हमारे जो है पैसा कमाने की मशीन है। थोड़ा सा बड़ा हुआ, किसी कारखाने में डाल दिया, किसी जगह बिठा दिया कि भाई ये पैसा लाएगा और पेरेंट की इनकम को सप्लीमेंट करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। माँ बाप जो है वो इंपेशेंट है, उनके अंदर जो है वो सब्र नहीं है, वो चाहते हैं कि इधर हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसा लगाया और ये जो सारे
1: तुरंत
0: छह
1: चलता
0: महीने में
1: जाए।
0: पढ़ना वो कमाना शुरू कर दे, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए कंपटीशन जो है वो जैसे ही कंपटीशन का नाम आता है तो हमारे जहन में आईएएस का ही आता है कि भाई आईएएस की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन आईएएस के अलावा दूसरे एग्जाम भी होते हैं। अच्छा, हर बच्चा आईएएस नहीं बन सकता, हर आदमी जो है वो क्लर्क या जो है कांस्टेबल भी नहीं बन सकता।
1: हर आदमी की
0: हर
1: सलाहियत
0: आदमी की
1: अलग-अलग है।
0: सलाहियतें होती हैं, हर आदमी का बैकग्राउंड होता है, हर आदमी की जो है वो एक नेचर होती है। बच्चा जो है चूंकि माँ बाप की गोद में पला है, पर्टिकुलरली माँ को जो है सब पता है कि इसकी क्या आदत है, कैसे उठता बैठता है, कैसे बिहेव करता है, क्या इसकी सलाहियतें हैं, तो उस पर जो है वो ये समझते हैं, वो उसको बरूबर कार नहीं ला पाते हैं। वो समझते हैं कि ये सब चीजें जो है करने की नहीं है, जबकि एक्चुअली उन्हें मालूम है, उन्हें पहले देखना चाहिए। मैं कंपटीशन को तीन हिस्सों में बांटता हूँ। एक आती है प्री कंपटीशन स्टेज, एक होती है ड्यूरिंग कंपटीशन पीरियड और एक है आफ्टर कंपटीशन। प्री कंपटीशन में जो स्टेज आती है मेरे हिसाब से वो ये है कि बच्चे की, चूंकि आप आदतों से वाकिफ हैं तो ये अंदाजा लगाएं कि ये पढ़ाकू है कि नहीं है, ये कितना टाइम बर्बाद करता है, इसके जो है पढ़ाई में दिल लगता है कि नहीं लगता, या ये जो है दिल उचाट होता है। अगर बच्चा जो है पढ़ाकू है, बुक वार्म है या चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है, तब तो उसे आईएएस की तरफ भेजिए, नहीं तो दूसरे एग्जाम है। दूसरा एग्जाम में क्या होता है, इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर एक्साइज का भी होता है, सीबीआई है, कस्टम है, ईडी है,
1: जी बहुत से एग्जाम से
0: बहुत सारे एग्जाम है, ये सारे होते हैं। तो उनके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा बच्चों को, लेकिन माँ बाप जो है वो बच्चा जो है एक फुटबॉलर बना होता है, माँ बाप जो है समझते हैं कि चाहिए पढ़ाएगा। हम कहते हैं कि भाई अपना रोल अदा करो, माँ बाप अपना रोल अदा करेंगे, बच्चा अपना रोल अदा करेगा और कोचिंग इंस्टीट्यूट या टीचर अपना रोल अदा करेंगे, तभी रिजल्ट जो है पॉजिटिव आएगा। वरना अगर एक आध चीज में भी कहीं कमी रह जाएगी तो रिजल्ट नहीं आएगा, फिर आप दोष देंगे जो है दूसरे लोगों को। अरे भाई आपका जो है ये प्री कंपटीशन में मैं देता हूँ कि आप घर में जो है वो एक कमरा उसे दीजिए, कुर्सी मेज दीजिए, उसके बाद जो है ग्लोब रखिए, मैप टंगिए, ताकि उसे
1: एक माहौल बने।
0: माहौल बने कि भाई हाँ यहाँ मुझे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो है शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको,
1: जी।
0: ड्यूरिंग कंपटीशन पीरियड में जो है वो उसके लिए जो है वो भाई किताबें हैं, कोचिंग की फीस है, उसके बाद जो है नोट्स हैं। अब जैसे आईएएस की एग्जाम, जैसे जैसे एग्जाम बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे जो है वो पढ़ने का
1: मजाक
0: मटेरियल भी
1: बढ़ते
0: ज्यादा हो जाएगा और टफ भी हो जाएगा। अब आईएएस के बच्चों के लिए जो है वो हमेशा प्रेस्क्राइब किया जाता है कि अपनी योजना भी पढ़नी है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे भी देखना है, कुछ एक दो गवर्नमेंट जो साइट हैं वो भी देखनी है। तो ये सब जो है वो कोचिंग के दरमियान में है, उसी पीरियड में आपने बच्चे को जो है अटेंशन डाइवर्ट नहीं करनी है, बच्चा जब पढ़ रहा है तो उसे सपोर्ट करना है। यहाँ एक वो आएगा, वर्ड आएगा दामे दरमे दखने,
1: हाँ।
0: आपने सपोर्ट करना है। तो माँ बाप तो अपना रोल अगर अदा नहीं करेंगे तो कमी रह जाएगी ना। तो बच्चा जब पढ़ रहा है तो उसे शाबाशी भी दें, उसके खाने पीने का उसका ख्याल रखें। अगर कैंडिडेट कोई लड़की है और वो एग्जाम देने जाती है तो माँ बाप या कोई ना कोई उसे साथ जाए उसके, ताकि उसे जो है वो अकेला पढ़ नहीं महसूस, उसे सेफ्टी का एहसास हो। तो आप आमतौर से जो है माँ बाप थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, या तो पेपर ही देने नहीं आने जाने देंगे, या देंगे तो फिर वो दूसरों के भरोसे पे छोड़ेंगे, भाई तुम ले आना तुम ले आना। भाई आप माँ बाप को अपने पैदा किया है, आपकी जिम्मेदारी तो बनती है, मजहबी जिम्मेदारी भी है, सोशल जिम्मेदारी भी है कि आप उसकी परवरिश अच्छे करें, वो सोसाइटी में जो है एक असेट बने, ना कि लाइबिलिटी बने।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: तो ये चीज है। और उसके बाद आता है कि भाई आप बैठे खुदा ना खासा आप जो है फेल हो, कोई बात नहीं, उसमें जो है डांट डपट नहीं करें, कुछ नहीं करें। यहाँ जो है अखबार का एक शेर मैं कहना चाहूंगा, वो यहाँ बिल्कुल टीवी फिट आता है मेरे ख्याल से, कि गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो
1: वो
0: तिफल क्या करें जो
1: बिल्कुल
0: घुटनों को बल
1: बिल्कुल
0: चले।
1: सही।
0: तो
1: हाँ, मैं
0: अगर
1: शफी साहब
0: आप
1: की तरह आऊंगा वापस। शफी साहब, आप तो एक बड़ा स्कूल चलाते हैं, बड़ा तालीमी इदारा चलाते हैं। आमतौर पर जब बच्चों को वहां एडमिशन के लिए माँ बाप लेके आते हैं, क्या सोच होती है, क्या उनकी उम्मीदें होती हैं आपसे, आपके इदारे से? और उसमें जाहिर है कि वो लोग, जैसे भी जिक्र हो रहा है कि वो लोग अपना पुराख नहीं अदा कर पाते, लेकिन बावजूद चाहते हैं कि बच्चा कुछ बन जाए। और क्या
0: जी,
1: क्या तमन्ना लेके
0: मेरा
1: आते हैं?
0: इसमें खाली एक ही इदारे से वाबस्तगी नहीं है,
1: अच्छा
0: मेरी कई इदारों से वाबस्तगी है। और

बम्बई में अंजुमन इस्लाम से भी मेरी वाबस्तगी रही 3 साल, जिसके 57 स्कूल सिर्फ बम्बई में ही हैं। तो मुझे बहुत करीब से पेरेंट्स को भी देखने का मौका मिला है, बच्चों को भी देख रहा हूँ, एजुकेशन सिस्टम को। मेरे ख्याल से हम एक बहुत ही क्रिटिकल दौर से गुजर रहे हैं। जब मैंने शुरू में भी कहा कि हर वालिद या वालदा, हर पेरेंट अपने बच्चे को बिल्कुल

0: बच्चे को बिल्कुल हौजे सुरैया पे मुकीम देखना चाहता है।
1: ख्वाहिश तो सभी की
0: तो
1: होती है।
0: ख्वाहिश होनी भी चाहिए लेकिन लाजिम है दिल के साथ रहे पालबाना, वो जरूरी है। तो पेरेंट्स को हमें समझाना होगा कि जो इंजीनियरिंग का एग्जाम है, जो बेस्ट एग्जाम होता है JEE, उसमें जो सक्सेस रेट है वो 4% है नेशनल लेवल पर। जो नीट है उसमें सक्सेस रेट 1.5% है
1: नीट में
0: नीट में। तो बहुत अच्छी बात है और ये जरूरी है। तालीम जो है वो पावर्टी को खत्म करने के लिए, जिसे एम्पावरमेंट के लिए जरूरी है। मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं कि कोई भी अपने, लेकिन या तो आप बच्चे को जब हमारे पास आते हैं उसमें एक चीज देखने को मिलती है कि लड़के के लिए वालदेन ज्यादा पुरुम्मीद और ज्यादा पुरजोश होते हैं। मैं कुछ फीस माफी की कमेटीज में भी
1: खेल में
0: मैं
1: आप
0: बैठा हूं, चेयर करता हूं, तो कई पेरेंट्स मुझसे ये कहते थे कि लड़की का तो छोड़ दीजिए, आप हमारे बच्चे की फीस माफ कर दीजिए। अगर दोनों भाई बहन पढ़ रहे हैं या
1: बिल्कुल
0: वो एक ही बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है और बहन को किसी दूसरे स्कूल में डाल रखा है, तो उनके दिमाग में ये रहता था, मैं खास तौर से मुस्लिम पेरेंट्स की बात कर रहा हूं, कि उसको तो हम कहीं ना कहीं पढ़ा लेंगे,
1: आप इसकी फीस माफ कर दीजिए।
0: आप इसकी फीस माफ कर दीजिए तो ये पढ़ लेगा। तो इसमें एक जो ये एटीट्यूड है कि हम अपने सिर्फ बेटे से उम्मीदें लगाए और कि वो हमारा नाम चलाएगा, ये गलत है। अल्लाह का शुक्र है वैसे ये अब आगही आ
1: बदल
0: रही
1: रहा
0: है,
1: है, रुझान बदल रहा है।
0: रुझान बदल रहा है, लेकिन ये 8-10 साल पहले तक भी मैं आपको बता रहा हूं कि यही रुझान था। और अब लड़कियां लड़कों के, खास लड़कों के मुकाबले में बहुत अच्छा कर रही हैं। इफ यू गो बाय द परसेंटेज एंड एवरेज इफ यू कम आउट, अगर आप उस
1: ध्यान
0: पर
1: दे
0: मुकाबला मतलब देखें, एनालिसिस करें, तो आप देखेंगे कि लड़कियां हमारी जो हैं वो पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रही हैं बनिस्बत लड़कों के। सारी सहूलियतें हम लड़कों को दे रहे हैं,
1: लेकिन रिजल्ट वहां से अच्छा
0: रिजल्ट
1: निकला है।
0: वहां से अच्छा आ रहा है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हमें खुद कुछ करके दिखाना है। तो पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि हमें पेरेंट्स की काउंसलिंग के जो हमारे सेशन, जो कोचिंग चल रहे हैं, वो सिर्फ बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से
1: जरूरत इस
0: एट
1: बात
0: द
1: की कि
0: टाइम ऑफ एडमिशन पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करने की जरूरत है।
1: अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि हम जो
0: और ये जो कहा शमीम साहब ने कि वो माँ बाप दाखिला कराकर
1: भूल जाते
0: मतलब वो लापरवाह हो जाते हैं,
1: हैं।
0: तो वो बहुत सही कह रहे हैं। आज भी मैं सुबह से बैठा हुआ था, पेरेंट्स से इंटरेक्शन कर रहा था, तो ये कि सर अब हम क्या करें, हमने तो दाखिला इतने अच्छे स्कूल में करा दिया है, न्यू राइजर स्कूल में करा दिया है, तो अब वो जाते जाते यहां से 3 बज जाते हैं बच्चे को। तो फिर उसके बाद सच्ची बात यह है कि उसका जाने के बाद का कोई कोई
1: शेड्यूल नहीं है
0: मैनेजमेंट ही नहीं है, कोई शेड्यूल ही नहीं है बच्चे का। तो
1: और जाहिर है ये
0: यहां,
1: सब इस बात से सब वाकिफ है कि घर का शेड्यूल तो माँ बाप ही
0: हाँ
1: बनाएंगे,
0: यहां
1: तो
0: जरूरी
1: बच्चा नहीं
0: है
1: बना सकता अपने
0: कि हमको थोड़ा सा रेस्ट्रेन भी रखना होगा वालदेन की एस्पिरेशंस पर, और स्कूल में अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला कराइए, लेकिन अपनी वसत के हिसाब से कराइए। ये मत सोचिए कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल में पढ़कर ही
1: आदमी
0: बच्चे
1: कामयाब हो
0: कामयाब होते
1: सकता है।
0: हैं।
1: जी जी
0: हमारे पास जो अच्छी अच्छे नमूने हैं, अच्छी मिसालें हैं, वो सब सरकारी
1: अच्छा,
0: स्कूलों में पढ़कर हुए
1: ये अगर
0: हैं।
1: ताजा मिसाल मैं आपको दूं तो
0: पीके जी
1: एसवाई साहब,
0: एसवाई कुरैशी, वो मेरे दोस्त हैं, APG अब्दुल कलाम
1: जी
0: साहब,
1: जी देखिए कितने सामने की मिसाल है।
0: जाकिर हुसैन साहब,
1: जी
0: और मैं नाचीज भी, मैं गवर्नमेंट कॉलेज का परवरदा हूं, वहां से मैंने अमरोहा से किया था।
1: वही बता रहा हूं कि ऐसा नहीं कि किसी स्कूल को हम तख्त
0: तो नहीं,
1: समझ लें
0: अच्छे
1: कि आप
0: अच्छे रिजल्ट्स जो आए हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज से, नवोदय और हमारे यहाँ सेंट्रल स्कूल है वो बेस्ट हैं।
1: जबकि
0: तो
1: सरकारी है।
0: ये जो एक होड़ हो गई है कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में चला जाएगा उसके बाद हम बेखबर हो जाएंगे तो बच्चा राइज करेगा, नहीं, इट इज ए मिथ मेरे हिसाब से।
1: तो क्या ऐसा नहीं लग रहा शमीम साहब कि हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि सारी खता जो है हमने वालदेन पे डाल दी, सारा कसूरवार उन्होंने ठहरा दिया।
2: नहीं, सारा उनके लिए नहीं, हर आदमी का एक रोल है, बच्चे का रोल है, बच्चे का रोल है कि
1: जी
2: टाइम पे पढ़े, ये चीजें याद करे, वो करे,
1: हाँ, एक
2: आए,
1: चीज ये
2: ठीक
1: मुझे
2: है।
1: अभी जैसे शमी साहब कह रहे थे
2: जी
1: कि 3 बजे जब बच्चा स्कूल से गया उसके बाद की शेड्यूलिंग नहीं घर में कोई,
2: हाँ, शेड्यूलिंग नहीं है, प्लानिंग नहीं है,
0: फिर
2: कोई
0: वो घूमता
2: प्रोग्राम
0: है
2: प्रोग्राम
0: टहलता
2: नहीं
0: है।
2: है, प्रोग्राम नहीं है कुछ के, उसने करना क्या है, उसने 40% नंबर आ गए तो कोई जो है बासपुरस नहीं करेंगे, 80 आ गए तो कोई जो है वाहवा नहीं करेगा। तो बच्चों को भी कई बार लगता है कि भाई
1: पढ़े जाओ
2: बस उनका कोई टारगेट नहीं है जिंदगी में, क्या बनना है कुछ नहीं बना, ज्यादा से ज्यादा कुछ बच्चे जो हैं।
0: एक बात मैं और कहना
1: जी
0: चाहूंगा
1: जी
0: कि
1: जी
0: जो मेरा मुशाहिदा

0: कि माएं जो हैं वो ज्यादा कंसर्न है बच्चों की तालीम के लिए,
1: हाँ
0: बाप को
1: बिल्कुल,
0: पता ही
1: आप
0: नहीं चलता,
1: कौन से स्कूल में है
0: मतलब
1: कौन
0: ना
1: सा।
0: वो ये जानना चाहता है कि मेरे बच्चे का क्या रिजल्ट है, मेरे बच्चे ने कैसा कर रहा है, फर्स्ट टेस्ट में क्या किया, सेकंड टेस्ट में कैसे किया, आखिर में जब वो एनुअल होना होता है तो भाई रिजल्ट क्या आ रहा है, और उस वक्त वो थोड़ा सा कंसर्न होता है, कोशिश ये करता उस दिन भी न जाना पड़े। और ये उसको जो हमारा राइट टू एजुकेशन है उसने और भी ज्यादा इसमें
2: आसानी दी दी। अच्छा एक चीज और भी है, अब आप लोग चूंकि दोनों इदारों से वाबस्ता हैं, अब पेटीएम शुरू हो गया है, जैसे वालिदैन की मुलाकात होती है टीचर्स के साथ।
0: उसमें भी मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि वालिद, अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो वालिद की हाजिरी जो है वो 30% से ज्यादा नहीं होगी, जो बहुत ही जागरूक फादर है वो
2: अच्छा,
0: आ रहा है, माँ ही आती बेचारी।
2: और भी जाहिर है हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो हमारी वालिदैन हैं वो कम पढ़ी लिखी हैं, बिल्कुल
0: वो
2: ही
0: कम
2: नहीं
0: होती है पढ़ी लिखी, 12वां भी है 10वां भी है, लेकिन वो आ रही है कि इज मोर कंसर्न अबाउट द एजुकेशन।
2: जी।
0: तो
2: अच्छा मैं शमीमुद्दीन साहब आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे अभी जिक्र कर रहे थे कि वो बच्चा इंस्टीट्यूट में आ गया, तो आप उसको किस किस तरह की हिदायत देते हैं, किस किस तरह की उसकी तैयारी कराते हैं?
1: तैयारी कराने के लिए ऐसा है कि मैं सबसे पहले तो भाई बच्चों को ये कहता हूँ कि आप डिसिप्लिन में रहिए, डिसिप्लिन में जो है टाइम की पाबंदी है, काम आपको कोई दिया है वो करके लाना है, आसपास जो आपके बैठे हैं उनके साथ शरारत नहीं करनी है या सिंसियर होना है, ये सारी चीज़ें सबसे पहले ज़रूरी हैं। कि अगर आप जो है बहुत केयरफुली लिसन करेंगे और कोशिश करेंगे, मतलब आपके वेयर देर इज द विल देर इज द वे, अगर
2: डेफिनेटली
1: आप सोचेंगे कि भाई याद करना है
2: तो
1: तो
2: याद
1: याद
2: होगा।
1: करेंगे, और नहीं सोचेंगे तो है तो मैं जो है वो, मुझे नहीं पता और लोग करते नहीं करते, लेकिन चूंकि मैं जो है वो मतलब ऐसे हॉबी एक करता हूँ पढ़ाने लिखाने का काम, तो मेरे अपने उसूल अलग है, और मैं आंखें भी निकालता हूँ, मैं बच्चों को डांट भी देता हूँ कि क्यों नहीं करके लाइए। हमारे यहाँ जो है ये बड़ी स्टार्टलिंग फैक्ट है कि भाई अखबार नहीं आता इसी यहाँ, अब अखबार नहीं आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बच्चों से मैं कह के थक गया, यहाँ तक मैं जो है शर्म दिलाने की कोशिश करता हूँ कि यार जो है अगर भाई साहब तुम लेने की पोजिशन में नहीं हो तो यार तुम अखबार ले लो, उसका बिल मैं अदा कर दूंगा, मैं इस एक्सटेंड तक जाता हूँ। और कोशिश मेरी ये रहती है कि जब मेरे पास जो बच्चा है वो कुछ सीख के जाए, महीना 2 महीने के बाद जब वो जाएगा तो वो बोलता होना चाहिए, उसे कुछ नॉलेज होनी चाहिए, गद्दे पे किताबें ली नहीं लदी होनी चाहिए।
2: सही बात,
1: तो मैं इसलिए जो है बच्चों से पूछता हूँ। तो मेरे साथ कोचिंग में क्या होता है, मैं फ्री पढ़ाता हूँ, पैसा एक नहीं लेता।
2: अच्छा
1: मैंने इंडिया इस्लामिक सेंटर से पढ़ाया, हिरा स्कूल में पढ़ाया जो इरविन के पीछे है, आगे हकीम अजमल खान में पढ़ाया, उसके अलावा और एक
2: कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था
1: मेरे
2: बस।
1: मेरे मेन जो है वो कम्पिटिटिव एग्जाम है। एक्चुअली 78 में मैंने नौकरी जब शुरू की और 81-82 में मेरे आईएएस के जो है चांसेस चले गए, मैंने मेन पीटी क्वालिफाई कर लिया था, मेन में 2-3 नंबर से रह गया 82 में। तो फिर मुझे ये लगा, मैंने एस एन दास में मैंने पढ़ा, डीपीसी दिल्ली पब्लिक कॉलेज में मैंने पढ़ा, उसके बाद एक जो है वो क्राट प्लेस में एक इंस्टीट्यूट था, नाम मुझे याद नहीं रहा, क्वेश्चन का था वो, वहां मैंने पढ़ा,
2: नाम की जरूरत
1: ठीक है।
2: भी नहीं है।
1: तो इन सबसे पढ़ने के बाद जो मेरे पास नॉलेज है, मुझे लगे कि मेरा जो पैसा खर्च करके पढ़ा तो इस नॉलेज को मैं आगे बढ़ाऊं, तो यार दोस्तों अपने एरिया में जिसमें रहा था मैंने मशवरा किया, कहने हाँ तुम ये करो, तो हीरा स्कूल से इधर उधर मैंने जो है वो किया, मैं सारी चीजें कंप्लीट है, एक आदमी नहीं कि पढ़ा सकता,
2: यकीनी बात है।
1: ठीक है। आपके यहाँ जो सैयद अफरोज आलम साहब थे, इनकी खिदमत भी मैंने ली, ये हिस्ट्री पढ़ाते थे और बड़े अच्छे टीचर साबित हुए। मतलब कहने का ये है कि बच्चा अगर ये सोचे, उनमें जो है हम ये कराते थे, अच्छा एक चीज और थी कोचिंग की मेरी, कि मैंने सैटरडे क्लासेस लगाता था दोपहर को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, संडे सारा दिन हम लगाते थे, 2 अक्टूबर की छुट्टी सारा हिंदुस्तान बंद है, लेकिन हमारी कोचिंग कोचिंग चालू थी, होती थी हमारी क्लासेस। मेरे पास टीचर आते थे, इंडिया इस्लामिक सेंटर एक जगह है, वहां जो है लड़के रहते थे, तैयारी करते थे खुद एग्जामिनेशन की, और मैंने उन्हें मैसेज भेजा, बुला के लाया, एक ने कहा जी मैं हिस्ट्री का पोर्शन में पढ़ा दूंगा, एक ने कहा जी मैं ज्योग्राफी पढ़ा दूंगा, एक ने कहा जी मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, एक ने कहा जी मैं जो है करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। तो इस तरह से जो है सुपरविजन मिला होता था, मैं भी पढ़ाता था, लेकिन उससे ये हो कि अल्लाह का शुक्र है कि चूंकि सख्ती रखी इसलिए रिजल्ट आए, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। आजकल मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे, टीचरें तो बहुत सारी हैं, इनकम टैक्स में भी है, पुलिस में भी है, आईबी में है, सीआईएसएफ में एक मोहतरमा है, और डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो है लोग मुझे मिल जाएंगे, जो पढ़ा लिखा जो तबका है वो मुझे पहचानता है, इसलिए कि भाई ये टीचर है, खौफनाक टीचर है, लेकिन जो है रिजल्ट आता है। लेकिन होता यह है कि 40 बच्चे एडमिशन लेते हैं, लेकिन जब वो बैच कंप्लीट होता है तो 20-22 ही रह जाते हैं, क्योंकि मेरी सख्ती बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैं
2: अच्छा, तो ये बताइए, चलिए आप क्योंकि सख्ती की बात कर रहे हैं और अपनी कामयाबी की बात कर रहे हैं, तो क्या खाली क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, वालदेन को क्रेडिट है?
1: नहीं, वालदेन को क्रेडिट ये है कि वो बच्चों को भेज तो रहे ना, ये भी कह सकते हैं संडे का दिन कहाँ जा रहा हो, एक आध लड़की

0: में शिकायत की कि साहब हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो है ये कहते हैं कि संडे का दिन है, सारी दुनिया जो है बंद है, ये कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। तो मैंने कहा कि किसी का ऐसे है तो आप अपने वालदान को मेरे पास ले, जब ऑब्जेक्शन करे उसे मेरे पास ले आओ, उसे हम बता दें कि हम क्या करते
1: हाँ
0: हैं,
1: सुमित,
0: कैसे
1: एक
0: करते
1: सवाल और
0: हैं।
1: मेरे ध्यान में आ रहा है कि देखिए, मुख्तलिफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, बड़े बड़े तालीमी इदारे हैं, उन सब में तालीम हासिल करने के बाद भी समाज में या माशरे में जो एक वाजह तब्दीली आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही। आप मेरे से ज्यादा तजर्बेकार थे, महसूस करते
2: बहुत
1: होंगे।
2: अच्छा सवाल किया है आपने शमी भाई। मैं समझता हूं कि मैं बल्कि कहने भी वाला था कि जो तीसरा इसका पूरे प्रोसेस का जो तीसरा पिलर है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट है,
1: जी,
2: और उसमें जो चीज देखने में आ रही है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो फैक्ट्रीज बन गई हैं, तो वहां भी किसी, अभी तक हमारे पास कोई ऐसा ऑपरेटर्स है नहीं कि जो उनकी काउंसलिंग हम कहीं से लाएं, शुरू कराएं। एक तो वहां प्रॉब्लम हो रही है कि वो सिर्फ पैसा कमाने की मशीन हो गए हैं। आई एम वेरी सॉरी, मतलब शमीम साहब उस तरह के आदमी नहीं है, ये तो बेचारे इंडिविजुअल अपना एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बात हकीकत है। कोटा जो है, जैसे अब मशहूर हो गया,
1: जी
2: अब वो एक कोटा नहीं है, हिंदुस्तान में
0: बहुत सारे
2: बहुत
0: होते
2: कोटे हो गए हैं।
1: हैं।
2: तो आप देखेंगे कि 22 डेथ्स हुई हैं पिछले
0: हाँ,
2: पांच
0: सुसाइड,
2: कोटा में पिछले 3 साल में।
1: वही वही मतलब है ना कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद भी बच्चे के अंदर
2: वहां
1: पहली तौर पर
2: कोचिंग को,
1: बालिदगी नहीं आ रही है।
2: चलिए पेरेंट्स का हो गया, उन्होंने दाखिला करा दिया, अब यहां रोल आता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का। उनको अगर सिर्फ ये लगेगा कि हमें तो दाखला हो गया, अब बच्चा जाने है, बच्चे का काम जाने, तो वो इंसाफ नहीं हो रहा है, वो शिक्षा नहीं हो रही है, वो तालीम नहीं हो रही है, इसीलिए वो अंडर स्ट्रेस चले जाते हैं।
1: इस तरह के केसेस बहुत सामने आए।
2: तो एक तो ये कि पेरेंट्स का क्या होता है, इवन अगर उनका कोचिंग में नहीं हो रहा है तो वो किसी प्राइवेट इदारे में दाखिला करा देते हैं। तो इसको तो एक तो अब कैसे गवर्नमेंट करेगी, हमने तो बहुत देखा कि गवर्नमेंट ने कोशिश की, इवन
1: नहीं,
2: प्राइवेट
1: इसलिए नहीं
2: स्कूल्स
1: होगा
2: में
1: सभी
2: भी।
1: साहब, चूंकि आप तो खैर तजर्बे जा रहे हैं, मैं आपके सामने क्या कहूं, लेकिन इस वजह से कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम प्रॉपर वे में नहीं कामयाब हो पाती, क्योंकि उसमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट कम रहता है
2: नहीं,
1: आमतौर पर।
2: पार्टिसिपेशन तो, वो बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया हुआ है, आपके दिल्ली गवर्नमेंट ने कानून बनाया हुआ कि किसी प्राइवेट स्कूल डोनेशन नहीं ले सकता है, मतलब किसी भी हालत में।
1: जी,
2: लेकिन ये फैक्ट है कि पेरेंट्स जो है वो तैयार
1: कहीं ना कहीं पेपर
2: रहते हैं देने
1: में
2: के लिए,
1: वो मसला वही है,
2: और वो
1: लेकिन
2: लेने के लिए तैयार रहते हैं।
1: स्कूल के नाम
2: तो
1: की
2: जिस
1: वजह
2: वक्त
1: से।
2: डोनेशन आ गया, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो प्रोफेशनल एजुकेशनल इदारा हो, तो फिर काउंसलिंग की कोई वो नहीं रहती है, कोई ट्रेनिंग की बात नहीं रहती है। अब वो उन स्कूलों में, उन इदारों में टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, उनकी इस्तेदाद क्या है, उनकी कॉम्पिटेंस क्या है, ये कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ नाम देख रहा है।
1: तो गोया कहा जा सकता है कि बच्चों की तालीम के साथ साथ जो वालदेन तरबियत करें वो ज्यादा जरूरी है।
2: तरबियत बहुत जरूरी है, और उसके साथ निगहदाश्त जो है
1: जी
2: बच्चे की,
1: एग्जैक्टली
2: और उसको पॉजिटिव लाइन पर उनकी काउंसलिंग जरूरी है। वालदेन ये समझकर ना छोड़ दें कि हमने तो दाखला करा दिया, वहां से जिम्मेदारी शुरू होती है मेरे हिसाब से, और वो आखिर तक चलनी चाहिए।
1: बहुत अहम गुफ्तगू रही, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और फिर यहां मैं सिर्फ अपनी बात एक जुमले में कहूंगा कि देखिए, जितनी जिम्मेदारी असाज़ा की है, जितनी जिम्मेदारी इंस्टीट्यूशन की है, उससे ज्यादा जिम्मेदारी हमारे वालिदैन की, कि बच्चे को लुक आफ्टर करें, बच्चा क्या कर रहा है, कितनी उसकी जहनी सतह है, तमाम चीजें वालिदैन को देखनी है। और अगर वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है कि हमारे माशरे में एक मुस्बत तब्दीली ना आए। जनाब शबी अहमद साहब और जनाब शमीमुद्दीन साहब, आप स्टूडियो में तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सामिन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम अंदाज़े नज़र, पेशकश मुबीन अहमद खान की थी। अपने मेजबान शमीम उस्मानी को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
3: अंदाज़े नज़र प्रोग्राम के तहत अभी आप एक मुज़ाकरा सुन रहे थे, मौजू था मुकाबला जाती इम्तिहान और वालिदैन की जिम्मेदारी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारे नशियाता सुन रहे मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DT फ्री डिश पर। लीजिए सुनिए फिल्मी नगमे, आगाज महेंद्र कपूर के गाए फकीरा फिल्म के इस नगमे से।

0: बना है ये। पर हमारी आर्मी में इतना जोश था, इतना जज्बा था कि चीता हेलीकॉप्टर्स हमारे आर्मी के भी और एयरफोर्स के दोनों उड़ा रहे थे। और सुबह से लेकर शाम तक जो हमने काम किया 2 साल, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी सेटिस्फाइंग कैरियर नहीं महसूस किया टिल आई केम टू द कारगिल वॉर। कारगिल वॉर मेरा दूसरा एक्सपीरियंस था, बट जो मेरी फ्लाइंग सियाचिन रिलेशन में थी, मेरे को लगता था मैंने जिंदगी में कोई बहुत अच्छा काम किया है।
1: जी सर, हम आगे बढ़ते रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे, लेकिन हम इन चीजों पर और ज्यादा आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ा ही एक्साइटिंग था ये आपका जो फ्लाइंग करियर था और जो हेलीकॉप्टर उड़ाना और जिस तरीके के जो खतरनाक एरियाज में और इतने कम टेम्परेचर, इतनी ऊंची पहाड़ियों पर, तो वो सब चीजें और जो करियर आपका शुरू हुआ बड़ा ही जोश और जज्बे के साथ शुरू हुआ था। तो जैसे कि आपने बताया कि वो बचपन में जब आप देखते थे तो वही चीज मोटिवेटिंग बनी, या और भी कोई चीज थी जो आप, जैसे हम मूवीज में देखते हैं अपने आर्मी ऑफिसर्स को देखते हैं, बैटल्स देखते हैं, तो वो जोश वो जज्बा, वो हम उस पर आएंगे, आपसे बात करेंगे। तो पहले हम बता दें अपने लिसनर्स को कि आप भी

आज के संदेश टू सोल्जर्स के हमारे मेहमान लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी से सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपना मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। हमें नंबर है 9868107070 और आप हमें सुन रहे हैं 102.6 देश का नंबर वन रेडियो आकाशवाणी रेनबो पर, दिल्ली एनसीआर में और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर अलग अलग हिस्सों में देश के। और साथ ही हमारी मोबाइल ऐप है न्यूज ऑन AIR, जिस पर आप हमें सुन सकते हैं अपनी मोबाइल ऐप पर।

0: 102.6 एशिया नंबर 1 रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स, और आज के संदेश टू सोल्जर्स के हमारे खास मेहमान हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी। बचपन से ही शौक रहा अनिल नंदा जी को कि वो हेलीकॉप्टर पायलट बने, और जिस तरह की टेरेन में इनको मौका मिला काम करने का वो अपने आप में अद्भुत है, अनबिलीवेबल है। सर, एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका हमारे इस शो में।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: सर, हम बात करना चाहते हैं कि ये जो आपने चूज किया, ये जोश और जज्बे से भरा एक करियर था हेलीकॉप्टर पायलट जब आप बने, और आपने सियाचिन ग्लेशियर जैसी एक मतलब बहुत टफ कहा जाए टेरेन होती है, कैसे रहा? मतलब शुरुआत तो जाहिर है जब आप शुरू कर रहे थे डर भी लगा या सब जोश था सब कुछ?
1: ऐसा है, जब हम लोगों ने फ्लाइंग कैरियर शुरू किया था तो हम लोग थोड़ा टफ कंपटीशन

0: से हम लोग को सिलेक्ट होते थे हमारे आर्टिलरी में, तो पायलट करीब होते थे, तो जो भी हम फ्लाई के लिए जाते थे पहले 6 महीने हम लोग फिक्स विंग फ्लाइंग करते हैं। फिक्स विंग फ्लाइंग करते हैं वो ऐसा टाइम होता है जिसमें आदमी को फ्लाइंग से अगर डर लगता है तो वो ग्राउंड हो जाता है, उसको वापस भेज देते हैं। तो फाइनली हम लोग 28 में से 18 लोग बच गए थे जो हेलीकॉप्टर फाइनली हमने कोर्स पूरा किया था। तो जिन जिन के दिमाग में वो डर था वो पीछे मतलब उनको उन्होंने वापस यूनिट पे भेज दिया था।
1: सर तो ऐसा ये क्राइटेरिया होता है कि मतलब ट्रेनिंग के बाद भी ये मौका दिया जाता है कि जो फ्लाइंग कर रहे हैं एक्चुअल फ्लाइंग उसके बाद भी उनको वापस बुलाया जा सकता है?
0: नहीं, जो एक बार ग्राउंडेड हो गया वो कभी दोबारा फ्लाइंग में नहीं आ सकता।
1: अच्छा,
0: एक बार ग्राउंड हो गया, जैसे मैंने बताया 28 में से हम लोग फाइनली 18 जो ऑफिसर्स थे जो फाइनली जिनको विंग्स मिला था जो पायलट बने थे, तो 18 बाकी 10 को वापस यूनिट आर्मी बाकी काम के लिए भेज दिया गया।
1: तो
0: एक बार पायलट बन गए तो उसके बाद वो लोग वापस नहीं आ सकते।
1: सर आपने जैसे बताया कि सियाचिन में जो टेम्परेचर होता है वो -50 to 60 degrees Celsius, सर वो अनबिलीवेबल लगता है हमें सुनकर के, आपको कैसा लगता था?
0: ऐसा है, ये टेम्परेचर -50 to 60 मैंने इसलिए बोला, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर जो -50 या 60 पे जाता है, -10 भी हो सकता है, -15 भी हो सकता है, -20 भी हो सकता है। ये टेम्परेचर ऐसा होता है जब विंटर्स होती है वहां पर, तो हमको सुबह सुबह उठ के फ्लाइंग करनी होती है, तो आपने ग्लव्स पहने होते हैं। अगर उस टेम्परेचर पे अगर आपने हेलीकॉप्टर के किसी पार्ट को हाथ लगा दिया, नंगे हाथ लगा दिए, तो आपको वही फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है।
1: तो सर उसको क्या समझे हम आम भाषा में?
0: फ्रॉस्ट बाइट मतलब जैसे बर्फ को अगर आप किसी अगर उस जगह पे करें तो आपका खून जम जाएगा वहां पर, वो खून आपको उंगली ही कटवानी पड़ेगी, आप वो उंगली ठीक नहीं हो सकती है, फ्रॉस्ट बाइट उसी को कहते हैं। तो अगर आपने सुबह सुबह ऐसा होता है कि जब हम हिल्स में सियाचिन ग्लेशियर हिल्स है बेसिकली, हिल्स में 11-12 बजे के बाद वेदर पैकअप हो जाता है।
1: अच्छा,
0: तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं, और क्योंकि ऊपर लोग बैठे हैं जो जवान लोग ऊपर चोटियों पे बैठे हैं, उनको खाना पहचाना, उनको राशन पहुंचाना, उनको ऑयल पहुंचाना, उनको दवाइयां पहुंचाना, उनको जो कैजुअल्टी ऊपर बैठी है उसको नीचे लेके आना, लोगों के घर से जो चिट्ठियां आती हैं या उनकी चिट्ठियां जवानों की नीचे लेके आनी। मोबाइल वगैरह का टाइम तो हमारे टाइम पे नहीं था, जब मैं अपने टाइम, आज का क्या है मुझे नहीं मालूम। तो इन सबको करते करते हमारे को हम 2 घंटे फ्लाइंग करके फिर पेट्रोल खत्म हो जाता था, वापस आके फिर पेट्रोल भर के फिर दोबारा, तो 5:30-5 बजे हमारी फ्लाइंग शुरू हो जाती थी, 11-12 बजे के बाद हर रोज और तकरीबन वहां वेदर पैकअप हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है जितने भी ऊपर जो बीमार वगैरह है उनको जल्दी नीचे लाया जाए। हर पोस्ट के ऊपर एक डॉक्टर होता है, वो कहता है कि ये P1 कैजुअल्टी है, P2, P3। अगर P1 कैजुअल्टी है इसका मतलब अगर आदमी को नहीं निकाला आपने तो ये कल तक नहीं बचेगा। तो हेलीकॉप्टर पायलट का ये मिशन रहता है कि जल्दी से जल्दी उसको लाया जाए, और वेदर खराब मिला तो बहुत मुश्किल।
1: तो इसका मतलब सर हर रोज हर एक मिशन एक नया चैलेंज होता है आपके?
0: एब्सोल्युटली।
1: तो सर वो इस कदर टफ सिचुएशंस में आपको अपनी भी सेफ्टी तो रखनी होती होगी ना, तो वो कैसे फिर आप पॉसिबल कर पाते हैं?
0: तो बी ऑनेस्ट विद यू, हर फौजी जब उसी अपने मिशन पे काम कर रहा होता है ना, अपना तो नहीं सोचता है, वो सोचता कि मुझे हेलीकॉप्टर फ्लाइंग मिली है, मेरे को फ्लाइंग करना है सियाचिन में। अगर वो डरेगा तो फिर आपको मैं एक तरीका बताता हूं, जैसे आप अभी सुना होगा कभी कोई हेलीकॉप्टर का कभी भगवान ना करे एक्सीडेंट होगा ना, तो ऑर्डर ये होते हैं कि सारे के सारे हेलीकॉप्टर थोड़ी देर के बाद सब फ्लाई करनी शुरू कर देंगे, किस ताकि जो पायलट्स ग्राउंड पे बैठे हैं उनके दिल में डर ना बैठ जाए। ये डर दूर करने के लिए हमेशा ऐसे होता है, जैसे मिग्स अगर मिग्स स्क्वाड्रन में कहीं कोई क्रैश होता है तो बाकी थोड़े मिग्स सब के सब फ्लाई करना शुरू कर देंगे, बिकॉज ये डर निकालने के लिए।
1: क्या बात है सर,
0: ये ट्रेनिंग का तरीका है। तो हम लोग अपना तो उस टाइम कहां सोचते थे, मतलब ऊपर जो जवान बैठा है उसको नीचे कैसे लाना है, जो बीमार है उसको राशन कैसे पहुंचाना है। तो बहुत सोल्जर्स का बहुत जरूरी जज्बा होता है।
1: बिल्कुल सर, और वो जज्बा जो एक सोल्जर का होता है वो शायद हम महसूस भी नहीं कर सकते, जो एक सोल्जर का जज्बा, जैसे आपने कहा कि वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर।
0: एब्सोल्युटली
1: जी। तो सर ये जो चैलेंजेस आपके रहे इस तरीके से आपने जो मिशंस किए, तो उन मिशंस के दौरान कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको आज भी डराता हो, याद आता हो?
0: ऐसा है, जब हम लैंड करने जाते थे तो जो 17,000 feet, 18,000 feet पे जहां हेलीकॉप्टर आपका उड़ना ही नहीं चाहता, पावर आपकी बिल्कुल खत्म हो जाती है।
1: जी, आपने बताया इस बारे में कि हेलीकॉप्टर इनकार कर देता है
0: फ्लाई की, बिकॉज पावर पूरी खत्म हो जाती है। जब आप लैंड करने जाते हो तो ऐसी जगह है, छोटा सा हेलीपैड होता है, वहां पर जो पोस्ट होती है वो लोग इग्लू के अंदर होते हैं, इग्लू के अंदर।
1: अच्छा,
0: ओके, बाहर सारी बर्फ इतनी पड़ रही होती है रात को, तो एच कैसे बार्क करे हेलीकॉप्टर हमको भी बताना है, क्योंकि हर जगह व्हाइट व्हाइट व्हाइट, तो एच क्या करते हैं बाहर निकल के, एच को पेंट तो है नहीं।

0: कभी बॉर्नविटा से एच बना रहे हैं, कभी चॉकलेट पाउडर से एच बना रहे हैं ताकि हेलीकॉप्टर आ सके. हेलीकॉप्टर उनके लिए जान होती थी. तो वहां पर उससे पहले क्रेवास 100 फीट 200 फीट 500 फीट की क्रेवास होती है. तो एक बारी आप लैंड करने जा रहे हो, उधर से पाकिस्तान को जब पता चलता था ये हेलीकॉप्टर आ रहे हैं तो एयर बस्ट एम्यूनिशन फायर करने शुरू कर देता.
1: यानी कि आपको चारों तरफ से वो खतरा
0: एब्सोल्युटली
1: उसका सामना भी करना है और मिशन भी पूरा करना है और आपको लैंड करने के लिए जगह भी नहीं है.
0: कुछ सेकंड मिलते थे, हेलीकॉप्टर के ब्लेड आप रोक नहीं सकते.
1: अच्छा,
0: आप वहां पर रुकते हैं कुछ सेकंड के लिए, पीछे लोग आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, पूरा सामान निकालते थे, अपनी खाली टिन अंदर डालते थे, किसी कैजुअल्टी को नीचे आना, एकदम जंप करता था हेलीकॉप्टर में. कुछ सेकंड भी हमको हेलीकॉप्टर हटा के वापस लाना होता था. तो मतलब कुछ सेकंड मिलते थे, कुछ आई विल नॉट से सेकंड, मे बी अप टू अ मिनट और टू. तो हमको इमरजेंटली वापस
1: ये अगर मैं समझू एक आम भाषा में, तो पलक झपकते ही आपका हेलीकॉप्टर वहां आना है.
0: हाँ.
1: और वो जो एक मिशन पूरा करने के लिए सिर्फ सेकंड्स का उसको समय मिलता है और उसको फिर वापस टेक ऑफ करना.
0: और हम सब ऑक्सीजन यूज कर रहे होते थे, लेवल पे ऑक्सीजन बहुत कम होती है, तो हम सब ऑक्सीजन बॉटल्स भी होते थे. मतलब वैसे भी अगर ऑक्सीजन वगैरह मास्क लगी हो थोड़ा विजिबिलिटी थोड़ी और भी कम हो जाती है.
1: तो सर ये जो खतरा जैसा आपने बताया कि हेलीकॉप्टर लैंड करना भी इतना मुश्किल होता था कि नीचे जो आप बता रहे हैं वहां पर गहरी गहरी दरारें जो
0: क्रेवास,
1: उसके अलावा हेलीकॉप्टर भी आपके ऑर्डर कहता था कि मत मनवाओ मुझसे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक्सीडेंट कर बैठूं.
0: बिल्कुल.
1: तो दूसरी तरफ से आपने कहा कि दुश्मन भी आप पर
0: एयरबस एम्यूनिशन है,
1: कि वो कभी भी आप पर फायरिंग कर दे, तो दैट वाज अ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर फॉर यू ऑलवेज.
0: एब्सोल्युटली एवरी
1: सर, ये पूरा करियर आपका एज ए हेलीकॉप्टर पायलट खतरों से चैलेंजेस से पूरा भरा रहा. वॉज दैट वेरी टफ स्कैरी और प्योरली मैं कहूं सेटिस्फाइंग जोश और जुनून देश सेवा जन सेवा से भरपूर, क्या कहेंगे आप?
0: मैं आपको मैंने पहले बोला था मेरा 25 साल में सबसे बढ़िया मेरा अगर कैरियर रहा
1: जी.
0: है ये 2 साल फ्लाइंग सियाचिन में सबसे ज्यादा मेरे को लगा मैंने जिंदगी में कुछ किया है. उसके बाद जब कारगिल में मौका मिला फिर लगा एक और मौका मिला है, पर फ्लाइंग कैरियर इन सियाचिन वॉज माई मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग.
1: तो मतलब कंप्लीटली सेटिस्फाइंग और पूरा जोश जुनून से भरा हुआ.
0: Absolutely.
1: सर आपको कभी डर नहीं लगा?
0: कभी नहीं.
1: क्या बात?
0: कभी भी नहीं.
1: तो सर ये जो आपकी बात है, ये जो डैरिंग सोल्जर, हम बताना चाहेंगे अपने लिसनर्स को यहां पर कि हमारे साथ बैठे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी, तो उनकी बातें सुन करके और उनसे बात करके मुझे भी जोश भर रहा है. तो ये जो
0: सॉरी मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं नहीं, सिर्फ मैं नहीं, अनिल नंदा नहीं, आप कोई भी सोल्जर देखिए, कोई भी ऑफिसर देखिए, आप उसको किसी मिशन पे भेज दीजिए, वो पीछे मुड़के नहीं देखता. ये मैं नहीं हूं, ये पूरे सोल्जर की हमारी ट्रेनिंग है. हमारी ट्रेनिंग इतनी टफ है, एक बारी ट्रेनिंग में एक बार मेंटल हमारे को ना फिजिकली टफ तो जितना होना होना है, हमारे को मेंटली बहुत टफ बनाया जाता है. अब कोई भी ऑफिसर मेरे को, तो मैं तो फॉर्चुनेट था मैं वहां पर था, मेरी जगह और भी वही पायलट है मेरे फ्रेंड जिनको सीएचए में नहीं फ्लाइंग करने का मौका मिला.
1: अच्छा.
0: वो भी अगर मेरी जगह होते तो वही करते जो मैंने किया.
1: क्या बात है सर, मतलब सबकी एक ही मेंटालिटी होती है, एक सोच. और सर जैसे मैंने कहा कि ये पूरी तरीके से देश सेवा से भरपूर और जो एक होता है ना कि अपनी पब्लिक के लिए, अपनी आवाम, अपनी जनता के लिए आप, तो जनता से भी आप कुछ, जैसे एक सोल्जर है तो वो चाहता है कि उसको भी तो वो एप्रिसिएशन और वो जो है ना वो प्यार मिलना चाहिए.
0: देखो मिलता है. अब आप जब जनता देखती है कि हमारे जनता को कब पता चलता है, जब से कारगिल जैसी लड़ाई होती है
1: जी.
0: जैसे सिंधूर जैसी लड़ाई होती है, ऑप्शन दूर होता है, तब उनको लगता है कि कुछ हो रहा है आर्मी के अंदर. उसके अलावा तो जनता सोचती है अभी फौज आर्मी वहां बैठी है, अपना काम कर रही है, अपनी तनख्वाह ले रही है. पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. और वो बहुत मुस्तैदी से काम करते हैं तभी हम आराम से बैठते हैं.
1: और जैसे आपने कहा कि वो पूरा डेडिकेशन उनका होता है और सिर्फ एक ही फोकस होता है, वो होता है कि अपने मिशन को पूरा करना और अपने देश की सुरक्षा, उसकी हिफाजत. तो सर हमारी और आपकी बातचीत अभी जारी रहेगी, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपसे ये बताऊं कि हमारे पास मैसेजेस काफी आ चुके हैं, अगर आप कहें तो मैं लेना शुरू करूं.
0: आपके लिए से आपकी
1: सर मैं यहां पर ये एक मैसेज जो मैं शुरू से लेना चाहूंगा. संदेश टू सोल्जर्स शो पर बहुत खूबसूरत गीत सुना रहे हैं और साथ में दिल को छू लेने वाली बेहद खूबसूरत जानकारियां मिल रही हैं, तहे दिल से शुक्रिया. जय हिंद, वंदे मातरम. ये है सर यश शिंदे मुंबई से, इन्होंने मैसेज किया है.
0: शुक्रिया.
1: जय हिंद सर जी. रजनीकांत रघुनाथ पाटिल हैं ये महाराष्ट्र डहाणू वाणवाण से. इसके अलावा ये मैसेज है, जय हिंद कर्नल साहब, हम ये सवाल कर रहे हैं सर, ये हम जानना चाहते हैं रात में हेलीकॉप्टर यूज करना कितना सेव होता होगा. रोहित महर हैं ये विजयपुर बारगढ़ ओडिशा से.
0: ऐसा है हेलीकॉप्टर रात को हमारे फ्लाइंग नहीं करते हैं. जो हम यूज करते थे चीता और चेतक हेलीकॉप्टर आर्मी के पास है, हम रात को फ्लाइंग नहीं करते. पर ड्यूरिंग ट्रेनिंग के टाइम पर हमको जब फुल मून होता है,
1: अच्छा
0: 3 दिन महीने में ट्रेनिंग करनी होती है रात को.
1: ओके.
0: क्योंकि ऐसा होता है अगर हेलीकॉप्टर में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कहां

0: लैंड करें, रात को कहीं ऊपर न गिर जाए, इसलिए रात को वैसे ही फ्लैग नहीं करते। अगर कोई मिशन होता है, जैसे वॉर होती है, मिशन होता है, तो आई एम श्योर वो मौका भी होगा, मेरे साथ नहीं हुआ है, मौका होगा कि रात को आप जा सके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप ट्रेनिंग
1: है आपको,
0: आपको थोड़ी सी चाहे मूनलाइट मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, बिल्कुल अंधेरे में फ्लाइंग
1: नहीं फ्लाई कर सकता जी। ये है सर जय हिंद, मेरे पास कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बट मेरे पास एक शेयर जरूरी है। जो सरहद पार रात बिताते है वही हमें सुकून की नींद सुलाते, खुद मौत से आंख मिलाते हैं तभी हम आजादी से मुस्कुराते हैं। सर मुझे गर्व है आप जैसे वीर जवानों पर। जय हिंद सर, इनका नाम है, माय नेम इज सौम्या वर्मा सर।
0: थैंक यू वेरी मच,
1: ये लाइनें आपके लिए लिखी इन्होंने।
0: थैंक यू सौम्या जी, आई एम ग्रेटफुल।
1: और ये है सर अनिल नंदा सर जी, आपको मेरा सलाम। आप जो देश के लिए कर रहे हैं वो बहुत ही बड़ा काम है, सोल्जर होना ही एक अलग ही लाइफ है। जय हिंद। ग्राम गेंडा खाली नंबर एक, टनकपुर जिला चंपावत उत्तराखंड से लिख रहे हैं, इनका नाम है सर अनिल कुमार।
0: थैंक यू अनिल जी।
1: और ये सर मैसेज आया है त्रिचुरापल्ली से सर, श्रीरंगम राजेश का। गुड इवनिंग टू ऑल इन न्यू दिल्ली AIR 102.6, सल्यूट एक्स आर्मी पायलट कम कारगिल वॉर वेटरन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम श्रीरंगम राजेश। और सर इन्होंने बस यही ग्रीट किया है सर।
0: थैंक यू वेरी मच राजेश।
1: और ये है विकास थापर सर, DLF 2 गुड़गांव से सर ये मैसेज कर रहे हैं आपको। वी लव यू अनिल नंदा जी, ही इज अ ग्रेट कम्युनिटी वर्कर टू हेल्पिंग द रेजिडेंट्स ऑफ DLF 2 फॉर मेनी ईयर्स, ही इज ऑल्सो प्रेजिडेंट ऑफ आर RWA DLF 2।
0: थैंक यू वेरी विकास जी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं
1: जी जी।
0: थैंक यू विकास जी।
1: जय हिंद सर, व्हाट इज द प्रोसीजर टू ज्वाइन एज पायलट टू ज्वाइन द आर्मी सर, ये इनका सवाल है। ये है प्रवीण जी।
0: प्रवीण जी ऐसा है, आपको पहले तो अगर आर्मी पायलट बनना है तो आर्मी में आप आर्मी ऑफिसर होना चाहिए, उसके बाद आपका PABT टेस्ट होता है, पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट। और टेस्ट पे आप क्लियर हो जाते हैं, जब आप क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपकी मेरिट बनती है, जो आपकी आर्मी सर्विस की प्लस आपके जो टेस्ट के मार्क्स आए हैं उसकी मेरिट लिस्ट बनती है। उस मेरिट लिस्ट पे जो आप अगर आप टॉप में आ जाते हैं तो आपको पायलट सेलेक्ट कर लिया जाए।
1: सर एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि हमें जैसे इन लोगों ने सवाल किया कि पायलट बनने के लिए इनको कहां से कैसे प्रोसीजर क्या है, तो उसके लिए
0: ये आर्मी पायलट की बात कर रहा हूं।
1: आर्मी पायलट की जी जी जी, एयरफोर्स की नहीं।
0: हाँ जी, आर्मी नहीं, आर्मी मतलब सिविल की नहीं, मैं आर्मी और एयरफोर्स का अलग,
1: एयरफोर्स का अलग प्रोसीजर है।
0: हाँ जी
1: जी जी। तो सर सभी को IMS ही होना कराना?
0: नहीं ऐसा नहीं, मैं इंडियन मिलिट्री अकेडमी ग्रेजुएशन के बाद होती है, उससे पहले NDA होता है, कोई NDA के बाद हम तीन आर्म्स में चले जाते हैं, कोई नेवी चला जाता है, कोई एयरफोर्स, कोई आर्मी में चला जाता है।
1: राइट सर।
0: मैंने चूज किया था इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो ग्रेजुएशन के बाद में किया था
1: जी।
0: तो उसके बाद आर्मी में जाने के बाद आप ऑफिसर बनने के बाद फिर आप फ्लाइंग ब्रांच में जा सकते हो। अगर एयरफोर्स में अगर NDA में जाते हो तो सीधा डायरेक्ट फ्लाइंग ब्रांच में आपको टेस्ट होगा। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में सिलेक्ट हो जाते हैं तो चले जाएंगे।
1: राइट सर। सर एक मैसेज और है ये, और जय हिंद सर मेरे पास, अच्छा ये दोबारा से इन्होंने मैसेज किया है, उत्तर प्रदेश लखीमपुर खेरी से इन्होंने लिखा था, नाम लिखा था, जगह नहीं लिखी थी, उन्होंने दोबारा मैसेज किया।
0: थैंक यू वेरी मच
1: जी। और त्रिचुरापल्ली श्रीरंगम राजेश ने सर आपको धन्यवाद किया है, आपने जो उनको जवाब दिया उनके सवाल का। और यहां पर हमारे साथ बातचीत जारी रहेगी हमारे आज के खास मेहमान संदेश टू सोल्जर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी के साथ। लेकिन साथ ही साथ यहां पर आपके लिए ये एक्साइटिंग ट्रैक का भी सिलसिला रहेगा जारी, आप हैं शायद के साथ।

0: आकाशवाणी करगिल ला न्यान खान दोन अजीज खान मीमा सुनला अस्सलाम वालेकुम याले प्रोग्राम न्यान खान न्यान तार तस्पा जिनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी करगिल छोसना फिस्पा प्रोग्राम छुले न जू सेवा संकल्प अभियान जरे गाउन अति गवर्नमेंट छोसना अति मीमा सुनि फंतोख सिफिया गागा जाति सिक्किम ची गाज गोंबेक लेंस दादस को लात फिस्पा बसे मीमा सुनला डिसोर ग्लेप छुने जू ध्यान जों से दिनी दी सेवा संकल्प अभियान दिनी दी प्रोग्राम पियानुक मातस टॉपिक पो जासु जू पीएम किसान गांव मत स्वल्प वसर ना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यहां दिस को लास्ट मीना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लंग सिको जिस खोज जो का गुलजार हुसैन साहबा गुलजार साहब सलाम वालेकुम गुलजार साहब तुस नफुत पा गुमा जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम पो जो गवर्नमेंट मीमांसर की लख्यों में मकसद चीज चीन में जो कोई तुन तक पूछी
1: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना स्कीम पूछू ये तोंदाक पुदुई मिंजु नति पूरा हिंदुस्तान यानु नति प्राइम मिनिस्टर इस एक स्कीम ची लागू बस सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस सेंट्रल इस गवर्नमेंट स्कीम पूरा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जन चेक स्कीम तक इस स्कीम पे यानु नति किसान सा का खासकर सख्यात गेट खानुन ला नॉन को आदि स्कीम पे यानु दो दो हजार ऊंचा फिया खोन ला दी फन के थपचा मेन सुपे चाइना दिली फन के थोबी फिया मेन चीज पो हकदार पे इंसु किसान ला सर
0: सैयद पो मरगोस गा खिन ना यंग नौकरी पे मियो मरगोस
1: कैसा
0: ता नौकरी पे मेन मांगा ता गुजर सदा नौकरी मेन मांगा ता जा बिजनेस बे या छोलेन बे दो चंग दिन दियो तिना देखा सैयद बच ना जो को फ्री गो जा को फोनिक सा छोलेन नो दिया बिजनेस पे गो ठेकेदार इन द छोला दोन लचा मिथोपी या तो
1: दे मिथोपी चंग दिन मिनु खासकर गवर्नमेंट ही थोबी स्कीम पे अनुक एज ए 10000 इकना गेन लखवा पेंशन थोबे दे 10000 गेन ला 10000 गेन ला गा सुचे पेंशन थोबना ओदुला दि किसान चे जरखान पुचवा यांचा मेन सु पेंशन 10000 कना यो गयो देसे नाता सोशली ओल पेंशन जरे नो दे 1000 2000 जरे या ओदु सो 10000 कना थुर ला खनु ला मेने दि स्कीम पुचवा यांचु खास कर माने मेन चीज पेंसु खुई मी का जमीन यो मा
0: कसा सही लेकिन दरसा किसान
1: बिन किसान चोखला राय मी का इंतकाल यो मा जरीन हुई सु रायमी का इंतकाल म्यूटेशन नंबर दो नकातो खुआ रजिस्ट्रेशन बाला गुमा गुमा चोचा माना चंग दी मेट पांगाती किसान
0: सागस्यु
1: रजिस्ट्रेशन बाचाना चंग देखा वांग चंग लैंड रिकॉर्ड कांग चेक या फलांस खसरा नंबर कांग चेक खाता नंबर कुलिया कुलिया ड्यू देना अचानक गवर्नमेंट इज रूल बस की खूनी लैंड रिकॉर्ड कंपलसरी बस की जून ध्यान लैंड रिकॉर्ड यो जरूरी छाना देख नाती नाची डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एज ए चीफ या नाची पीएम किसान अनुक एज ए डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर नाची मैम रजिया जैन मैम इस पूरा आगे तक देना बस की कंसर्न एयो सक क्यों से खुआ जैस की चांद सिंह अति कारगिल दिन सक पर 2019 का दिन सक पर रजिस्ट्रेशन सो से दोन सगे लैंड रिकॉर्ड सक क्यों मा जरवीन देख ना कुलिया कुलिया अचास क्यों क्यों सो से लैंड रिकॉर्ड सक जम बसे दोन यंग यंग अगेन यंग अचास खूनी देना लैंड रिकॉर्ड उन अपडेट बसे रामी का यथखन का यथखन पर अचास अपडेट बसे छाजस्टल मेन ना का तो अर ने खो दी फन के थपखन बेनिफिट पर किसान साहब बन छे छाजुक छानिया अची एज ए चीफ या अची नोडल ऑफिसर मैम रजियास खोई दी मेहनत का अचास आगे साथ देने बसे क्यों से दिली लैंड रिकॉर्ड सक अपडेट बसे नाती किसान सगा दी पेने कंटिन्यू लुशा बस
0: कसा बख्शीश गुलजार साहब ता जर भी तोन पेन जु गा सगेत पे नती जु गा असिल ला दीर गुज दीर रुख सीर गुज दो दतन खर गुज दो मतन हकदार होतम दो मन तो मितप जस असन सिन जु ते कंडीशन जक पिन आ जमाती

0: यार मौलवी नवाजिन की
1: जी
0: ना नौकरी पमी उम्र गोस या
1: जी
0: ख्वा 10 रोज थाले पेंशन में उम्र गोस
1: कैसे
0: दे
1: कैसे
0: मिल
1: क्या
0: लगा लर
1: ये
0: गोस दो दो गोस दो मुझे खान पु
1: कैसे
0: ने गुजार सब ताना ता सर बच्चन जो पीएम किसान स्कीम नाल जोस दे पेने हो गा यार जाज बिबारी
1: कैसे सर
0: सगियत पलस तोंगनीस तोंगनीस बसे साल यानो या लोखुर चानो स्टोंग टू गोचिन जरे
1: कैसे
0: दो
1: कैसे
0: खे अकाउंट या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम चिन पर जो डायरेक्ट डीबीटीएस सिस्टम पर गजुक शैलास बात या तो नाते सगियत पौनला आती सा जिंगबाद बेबिंगना या कोई ना गोस दो मुनिफिया गजुक शेरोक शेचे
1: सर दी क्वेश्चन पुयर एस माना खाचन क्वेश्चन चिची सर दी डायरेक्ट डीबीटी जर्सो
0: कसा सर
1: गवर्नमेंट इसनाला पीएम किसान रजिस्ट्रेशन बस होता ना एस पर अकाउंट भेजो चुक सर या
0: कसा
1: जर्सा खूनी फार्म पे अनु गा अकाउंट चिकता सोचना अकाउंट नंबर को गाता सोचना जना अकाउंट पे अनु खूनी पेने छेने चुक
0: कसा
1: छाना उदूस बसे खाची की अकाउंट डिजिट चिची बसे गलत अकाउंट अनु पेने छेने चुक
0: कसा
1: देखा ना आदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बस की आधार बेस बस सर
0: कसा
1: आधार बेस मतलब पु आधार पुनमो गाय कौन सी लिंग योजना
0: कसा
1: दया पेने छाचा छाना डायरेक्ट डीबीटी यंग जासु की आधार न लिंग योजना मैंने खोई पेने
0: कसा
1: छाचा मासु दे छाना गवर्नमेंट इस बस की आधार बेस बस आधार
0: कसा
1: बेस मतलब पुखे आधार पुनमो गाय कौन सी लिंग
0: कसा
1: योजना दया पेने छेने छु छाना स्नान लांग फार्मर सा यों न छ जु गा पेने मोस
0: कसा
1: हा ना मायोस फलान मोस फिस्तान स्नान ला यों मत पिन नक्सा दुस पिस किल्ला बान
0: बांसु
1: छु
0: कसा सुम
1: छाना बान छाचा सुन दे स्नान ला कौन बेजत पने कौन पे छाचा
0: कसा
1: सुन देना कोई आधार न लिंग पने दे पने छाचा सुन छाना कोई आधार पो मिसाल जेएनके बैंक कारगिल ना
0: कसा
1: सुख या स्टेट बैंक ना सुख या खुरी आधार पो खुरी फ्रिक नंबर ज्वाइन अकाउंट फेस पना
0: कसा
1: दे अनु पेने सुन से सुख छाना फार्मर जो सुख दे अकाउंट पंगी
0: ना
1: माना
0: पहले
1: मैन
0: मौज रे
1: माना मायों से चिक
0: सब
1: दे अच्छा स्टेटस चेक बना स्टेटस बस चेक बस खुआ शो बस स्थान बना फार्मर से नुक ता फार्मर सा से दे दिए कौन को
0: सुन
1: माने नी इन
0: कसा
1: मेन माने मेन जो चोरे कौन सिंगा माने मेट से नुक दे कना आचा ज्ञान बो ते ते खेरे बेंगा सो से कौन चेक बसस्ता ना यंग सो यो मिन खुलती खुरी
0: कसा
1: खानदारी खुरी फुसी गोन खुरी फुआ आधार मालदान मत पना आधार पतंग मना
0: अते अदर पता
1: आधार
0: से
1: मान
0: अकाउंट जिसका
1: अकाउंट चोसपा
0: सुन कसा
1: सो छाना उदुस बसे आधार लिंक पना उदुस बसे ज्वाइन अकाउंट नो पेने सो सो चाइन और दूसरा दक्षिणा ती पोस्टल जें चेक कोन दे प्रति
0: कसा
1: दाखने अनुक
0: ये कसा
1: ओदि अनुक अकाउंट नंग ध्यान नो पेने
0: गा
1: चाचाइन
0: आधार थुत होते होते
1: योजना
0: अकाउंट में छछे
1: दक्षा
0: चुका
1: आती एयरटेल जिन चाहनु
0: कसा
1: ने अकाउंट खाचिक एयरटेल ही देने दिन का
0: कसा
1: तो उदुन अनु लिंक बस उत्पन्न दोन अनु पेने सो सोनु
0: कसा
1: छाना मिमंग आती किसान छगा घास गुजारिश जा बेचारिया रंग अकाउंट पुगा अकाउंट से नंबर लिंक योजना
0: कसा
1: दिया नंबर ठीक ठाक बसे लिंक बसे सकता
0: कसा
1: आ अकाउंट पिंग ना लिंक पुथने ने यहाँ अकाउंट चिका लिंक का तो खेरना का तो पीएफएमएससी का रिजेक्ट स्थाने नु की आ
0: कसा
1: का लिंक छाछांग मंगमो गौर बचुक छाना मीमांस दिया जरूरी इनकी फार्मर सब खासकर किसानी फार्मर सब
0: कसा
1: कौन सा दिया जरूरी इनकी खुंतंग खुंती गाय कौन सी नंबर लिंक योजना देना
0: कसा
1: अकाउंट पर नंबर लिंक बसे जगचा ताकि दी
0: कसा
1: पेने बन मिछा चार
0: सब
1: बस
0: निगुजर सब तदिया माता मार देमोस परे भी सोचू नी दिया माता रजिस्ट्रेशन बगाओ अकाउंट चुए तांग या माते पीएम किसान नाम जो स्कीम नाम जो रजिस्ट्रेशन चुए तांग दो ई केवाईसी या वेरिफिकेशन हो पीएम किसानी
1: कसा
0: दो माती सगियत पाला दू माशीज होते काता शिकार ले बिंदु जो कि वहाँ पहने मालू तू से का पहने मालू
1: या
0: बजरे
1: रजिस्ट्रेशन
0: दिए
1: बस
0: ई
1: हो
0: क्या वैसे मशहूर है दी चीज़ प्रोसेस होती है यार इस चीज़ का चंगाती सगेत पना चाहिए दी लाभस्थानी बुक्सन
1: कसा लासा पीएम किसान यहाँ सोमा रजिस्ट्रेशन बाज उमना का तो
0: कसा
1: सोमा सुस रजिस्ट्रेशन या का तो बेन ना
0: कसा
1: का तो खुआ एस पर 2019 से कन्या गेन ला इन कोई मेट्रिशन डेट पो यो मर गोशिंग
0: कसा
1: 2019 जब ना 2019 20 21 22 23 2016 छाना इंतकाली डेट पो
0: कसा
1: ताना ओजी
0: सगेत पे है
1: हा
0: जो
1: सकेती
0: कसा
1: और दूसरा आती पीएम किसान या खासकर 2019 सिकना टिल डेट दा छपे ना ता पीएम किसान रजिस्ट्रेशन बस यो
0: कसा
1: ध्यान सूची की फादर चिक डेट छे मिसाल
0: सुन
1: छाना उदुन लमान आसानी एक दो महीने रि अपना वरासती इंतकाल पर फ्री मी का लॉकचाइन
0: सुन कसा
1: फ्रू इन नौकरी म्यों मर गोशिन
0: कसा
1: छाना
0: शायद
1: का
0: पूजा तो
1: शर
0: नौकरी
1: नो
0: में हो
1: म्यों मर
0: शिन
1: गोशिन छाना फादर डेट छाना का तो फ्री मी का दो तीन महीने के अपना वरासती इंतकाल छे छाना खोस गाची ऑफिस लयों से गाचा फार्म तंचिन जाना पीएम
0: कसा
1: किसानी ओदी का खाता नंबर 5020 तंचिन खासरा नंबर 20 तंचिन डेट ऑफ म्यूटेशन तंचिन यानी
0: कसा
1: नाम यारी मी का इंतकाल सो मिन जरे
0: कसा
1: ओदुन सब पटवारी का ना खोचा छाना ओदुन ला दोना ध्यान मेन चीज पर रामी का राशन कार्ड पे उमर जरूरी
0: कसा
1: और दूसरा रामी का राशन कार्ड उमर गोचाइन और जो डेट ऑफ सर्टिफिकेट पुबा आते नाम को
0: कसा
1: सोमिना या अस्पताल का सोमिना या खामा सोमिना इस पर नंबरदार करना डेट सर्टिफिकेट
0: कसा
1: इन क्यों से फॉर्म पे अनुग दुंगा में कंपलसरी तामा जरूरी इन सर छाना ओदुन तना स्थान लंग आती डिपार्टमेंट अनुग रजिस्ट्रेशन बात पिन
0: कसा
1: दक्षा गवर्नमेंट बस सेल ऑफ रजिस्ट्रेशन रंग इस बचा रंग इस सेल ऑफ रजिस्ट्रेशन या सीएससी सेंटर का से बचा ओदुन रंग सना सेल ऑफ रजिस्ट्रेशन बेमार सब

0: tan presi sa chim sui na zarna
1: Casa.
0: khoi kana registration song selab registration bas
1: Casa.
0: khoi kana cha chin suk sar e kvc chosene april la cha chin suk sub district sub district gila khoi zuna level ka song khoi la song sene khoi check ba chin suk ki khoi dhyanu
1: record
0: du min du land record submit ba suga ya death certificate submit ba suga ration card submit ba suga khoi other yang problem ka tu min du de kana khos de kana approve ta se ni district nodal officer pm kisan la chin chana dyanu khosam check bachin dyan ka tu sahi ka tu na as sachin state nodal officer ga ni last pika state nodal officer approve ase age lepchin de kana under process so se ni ek do mahine ke amna ya ek mahine ke apna khoi registration compulsory so se record lanchin sir san la mala as registration bas pehle pehle chana agle din uska khwa id wadi
1: sab dan
0: daksa mala chingyan yan po farmers la ga shuk shuk chin na gadbat micha che bi fia first of all po rang so se rang selab registration ba mana zaruri
1: ta gudar sat das prego ba se ga so se sagat per gal ya ra da ko phula bara sat disu ta galte du tok shan che ju sagat per gas ya khos ko phun ni zot niska khos sagat gos tas ko sagat las bans ta ko phun la chi che chin registration ba na sak pm ki sani ka
0: khurang mala god macha yo na
1: god macha
0: ka sa
1: ta por gas mazur so ra da
0: do mayan de sar
1: Kasa do yar gal boshar
0: don jin nyan ni sapuja mi ka sa
1: na head pe ka jin
0: head pe ka head of the family ka yong mo
1: kasa
0: ka chan jarvi dyan tana sar yes question pe dana khuran continue bas yes the ekvc bari anu jas de sa ekvc daksa ati dyan 2026 anu pura hindustan anu di ekvc chau compulsory bas sachya jasa har financial year anu ekvc chau man nazar vin suk daksa 2026 an chos next 2027 yang chuar go
1: yang chuar go
0: 28 yang chuar go di chue maqsad pu du in zu ki ga su chi ekvc ma chuar du na ka to khwa pe ne mi cha sung government ta du na man ma chuar du misal 2026 ma chos फिर घुस को पता खो पता छर घुस की जूस चा माचो इन या तो ये डेथ हो गया या तो कुछ हो गया जरे माले बना कोई दुई पे कोई पे नहीं बन बजन सु छाना मीमांस ला दिया जरूरी की खोस रंगन में सब रंग ई के वी सी चाओ मन जरूरी हर फाइनेंशियल फाइनेंशियल हर फाइनेंशियल ईयर यानी चा जरूरी दुबा चिक्स ना ला सर 2024-25 सर माची चीफ सर्विस ना एसएनओ में एक मिशन चिक जस्पिन सर dhyanu pura EKVC mana trefia ek mission bas hai 2025 100% achas EKVC saturation bas sham na son se chocha ya concern zone officer sa son se mana block yang zone yang son se achas EKVC chos ngati dur zar zila ka nyan mi ngati malab jase zanskar chok ya ichu chok shargandi chok de jagan yang thila brok chok jagan yang nuna network problem achu sir chana dun yang nuk mi khachik पीएम किसान फार्मर खचिक बिचारा गरीब यो चुक और माना छर्मा यो चुक ई के बी सी चुआ खून रमा फैसिलिटीज मेरे पर नेटवर्क की प्रॉब्लम मेरे पर ना अच्छी चीफ साहब ना मैम इस क्या देना बस की डिपार्टमेंट खून थेस गाड़ी तंस
1: अच्छा दिस क्या पर क्यों
0: ओ जहां मतलब क्यों से गार जगह का नेटवर्क दू लेना ओदी का क्यों से खून ला जाना तंस देखा जान वन तंस से ई के बी सी चोस से यंग खून दिखा मार तंस ना दे साहब की गंगा ची 2024-25 ही मिशन पो माना सक्सेस हो ई के वी सी माना 100% सैचुरेशन सो सिन छाना दक्षर नेक्स्ट ईयर पे अनुक 2026 अनुक यंग दा चोला ई के वी सी हर जोन यंग ट्रेन आयो और दक्षा मिमांग सुल दा गुजारी छिन की माची हेड ऑफिस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनुक एस पीएम किसान सेल ऑफिस उत सर दा यों से ई के वी सी चाओ माना जरूरीन दा यों से चोचा
1: ता गुजर सब ये दखने जस की एंटी हेड ऑफिस ला ई के वी सी सेल उजरे तमाते ब्लॉक लेवल का या थाने से मसाने के एंटी सेल वेल लॉन्च ने चंग
0: दोनों का अच्छी ऑफिस हो सर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर सर दोनों का एज ए वीएनओ जरे अच्छी विलेज नोडल ऑफिसर पीएम किसानी चोस दोनों हर जोन या खून इस दक्षा हर सेंटर सेंटर का ई के वी सी चुन हो सर खोन स्कैम तंग से याद ने बेंच
1: हरीश ने मत खमत करगी लो मोन रिच
0: मोन रिच मान खास कर मतलब मेन चीज पोती खाची दी करगी ले रिया दुख सोदना का तो मेन ऑफिस लायो से चोचा या जैसे चिकतान जेर या सांकु दे प्रजोदना का तो माची एक्सटेंशन ऑफिस शरगोल एक्सटेंशन शकर चिकतान सांकु पानी खारी इन का सो से ईकेवीसी चोचा
1: का गुजर सब दस मता गा सके गवर्नमेंट रूम चाहिए ना जुगा डिपार्टमेंट चाहिए टेक्नोलॉजी का मता मन अर्जन का मोमो थोन जो का टेक्नोलॉजी स्ट्रोली का मता बेनिफिट मती मिमा सुन लेप चुकी मता फलो थोन जो नी पीएम किसानी नाम जोस
2: technology.

0: के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% किया गया है। नीट पीजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 30 अगस्त को देशभर में आयोजित परीक्षा में कुल लगभग 2,66,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। उम्मीदवार 1 अक्टूबर या उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही उत्तर कुंजी 1 अक्टूबर को बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित होने की उम्मीद है। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ अन्य तीनों देशों के विदेश मंत्री भी शामिल हुए। संयुक्त बयान में कहा गया कि सुरक्षा परिषद ने स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। घरेलू शेयर बाजार में आज 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1,248 अंक गिरकर 73,581 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 384 अंक की गिरावट से 23,063 पर दर्ज हुआ। जापान एशियाई खेलों में आज अनंत जीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी के मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। रोशिबिना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। एथलेटिक्स में जय कुमार, अंशा बाबू, मानू टीएस और रशदीप कौर की मिक्स टीम ने 4x400 के फाइनल में और अनिमेश कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। स्क्वाश में अभय सिंह और वीर चोटरानी पुरुष सिंगल्स, तन्वी खन्ना और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स, जोशना चिनप्पा और विलावन सेंथिल कुमार मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। टेबल टेनिस में मानुष शाह पुरुष सिंगल्स, श्रीजा अकुला और सिंड्रेला दास महिला सिंगल्स और दिया चिताले तथा यशस्विनी घोरपड़े महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गए हैं। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदकों के साथ 14वें स्थान पर है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। गोवा और महाराष्ट्र सहित रायलसीमा में अगले 3 दिन तूफान की भी आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल और माहे और मराठवाड़ा में भी तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has said, service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said that in politics too, service should remain the guiding principle, even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi.
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: द प्राइम मिनिस्टर सेड Service is the biggest driving force. He said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery. The Prime Minister said it is only when there is a spirit of service 4 crore poor have received permanent houses. Chief of Defence Staff General N.S. Rajasubramani today

0: बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ये कहानी है एक नर्स और उसके हमजाद की। आ गई तनख्वाह, अब नए झुमके ना, पहले बचत पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा इन्वेस्ट करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
5: लेकिन वो झुमके
4: जाती हो कि?
5: हाँ,
4: लगाओ इंजेक्शन।
6: आरबीआई कहता है,
4: माली समझदारी खुशहाल नारी।

0: चेंज छ छाना का तो बहुत ही जरूरी पीरियड चीन
1: कसा
0: आता पहला सो रो दे कि डी एच पियानो का तो सु का तो गा फ्री क्या बुछे गो में ज्ञान ग्रहत न पूरा हमेशा के लिखो ग्रहत पर जरे फोकस पकड़ा आता स्कूल ही निकलता मैं दे एडोलेसन हेल्थ टिका जरे या ngati khama in nang ha har chi si ga adi chunse chunse phruni ka naujawan ka sak nazar lu shin ra chana di changes po nyambo nyambo khonga yarang zer na ga to de tabdili nyambo nyambo khwa yong chin dimagi khwe ka pressure ang yong chin
1: sura
0: jaze mana khwa yong chin sukuli ka khuri la si yong chin expectation yo de khwe ka na khos du bacha men zer khan po ya khos du sok shil lan chin zer khan po khwa de ka pressure dan chin ऊपर से बॉडी चेंज छा हार्मोला चेंज मन जे से खवा दिक्कत चेंज चा है बोसाइन बोमोइन इसका दोना यरा यो चिन को फैमिली फंक्शन या खुरी न्यंबो न्यंबो एकेडमिक पो न्यंबो खुरी सवाक पो न्यंबो न्यंबो को सोसाइटी अंग नोंख यरा आदि देनन एडजस्ट छा खवा मुश्किल छा चिन कभी कभी नौजवान खाचीगा छाना का तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम पुखोरा आध्यान एरा सचिन अगर खतो खवा टाइम एक का तो सपोर्ट मथोपना चना का तो क्वेश्चन पुंगति सवाल पयरी दो छु दे कि आदोनी फिला आध्यान उगा जहनिक परेशानी मियों छि बिमिना ची ची बा रोशिन जरे चना का तो एक्सपेक्टेशन पुमन छि मो छिन खेका जस बने एरा दी पीरियड पे नु फोन लेपचिन 10 पास बसे 11 12 ता लेपचिन चना का तो 11 12 ता नु पूरा एक्सपेक्टेशन फ्रू अगर बेहतरीन फ्री योतना खोई परफॉर्मेंस मन बढ़िया उतना स्कूल पांच ने सजेशन की खोस खो डॉक्टर लंचिन खो इंजीनियर लंचिन खावा पानी अंक खोई नजर आउचिन खो डॉक्टर लंचिन खो इंजीनियर लंचिन स्कूल खोरंग या सोसाइटी खोरी अनु समाज यान आउचिन खोई अच्छा दी फ्रू मन जहीन योत खो पक्का दिन निकल जरवाना कभी कभी अदर एक्सपेक्टेशन भी का खो नॉन चमेन सच्चा ना का तो कोला घोरा खोई का प्रेशर बिल्ड छाचिन यार खोई का प्रेशर आउचिन आदे फिशार पयंग मन खो कोला कोला आदे एकेडमिक्स एक्टिविटी सुन कम छचिन सो छन या रंग जस्टिन ध्यानो मैनेज बे तरीका छ छ या रंग डी एच पो खोरंग मन खुन आदे फ्रोन मिंग ना एडोलेसन नौ जाना नि मिना मन सतरीन एशिन
1: कैसे होना ना
0: छन का तो आदे चीज में अनु खर देन एक्सपेक्टेशन पो कम व दोनो खोय सेहत ठीक आते खास ख्याल जा खास कल कोई जहनी सेहत पिका दिमाग सेहत पिका सगे नजर लुस प्रोग्रेशन ना कि खो डॉक्टर लंचिन इंजीनियर लंचिन दो रिया बिस पर है लेकिन डी प्रेशर पे डी नीचे डी टाइम चैलेंजेस पे अनु खा सहत खुए मतलब मेंटल हेल्थ सपोर्ट मन ज्यादा क्वेश्चन जैसे मनु खा एट ए टाइम डिसीजन लेन में क्वेश्चन कि खो रिया अपना आरेस चे बचेन इलेवन त्यांग ले बना टेन त्यांग मला गा फ्रिक टेन त्यांग पास जाने का तो सब्जेक्ट खुरा चिलेन चुजरे चामचे कंफ्यूजन एक दूसरा तीसरा हार्मोलन चेंज ना आता समाज चन कभी कभी बुसाना बोमो सक ने बो दुखे था जो आधे दिन ना नंग जोंग चिन यार चन आधे चन प्रेशर बिन चिन कि नारे सही बिन होता गलत बिन होता रुख पता है जमें डी एच पियानो को मतलब फ्रून ला चाहे बुसान बोमन हर चीज को
1: काउंसलिंग बर वशन सारा ये पेरेंट्स सुनी गाइड बर वशन
0: गाइड बर वशन पूरा हर चीज बे खवा शोक लांशिन
1: कैसे
0: बेहतरीन बसे जाने कंट्रोल बसे सिले छाना खो आगे भी दी टाइम पी का मेंटल हेल्थ जहनी देने का यहाँ देना जकपा माना जरूरी मैनेज पूछी बाजे बाचिन जरूर मैनेज पूछी बाचिन फूने का एक दबाव कम था खुआ खुंती डिसीजन मेकिंग अनु खुआ सिर्फ मदद बचांगा तेस खुआ लम्स तन मगोशिन कि तू ये दू सही हैं जो गलत हैं क्योंकि छिमीन इस आदेश बोबास होंगे चंदे आदेश बोरगाले होंगे चंद चाहे एक्सपीरियंस होंगे चंद पाया दोना फ्रून लंग इन ना छिमी जेस पाव बचा क्योंकि छिमीन इस आदेश बोरगाले होंगे चंद जैसे कि गाँव फ्री उतना खो दे रही 15 साल उतना का तो खोए छिमीन ओचिन 25-30 साल छाना का तो 10-15 साल खोए बच्चे आगे दी जिंदगी इन बात ओचिन छाना फ्रून लंग स्पेरांग यंचा मन जरूरी छिमीनी वो दोनों छिमीन इस एक्सपेक्टेशन पर कम जाता का आते कि ना मे कि ना एक्सपेक्टेशन कम जाता यार कोई बात नहीं जर भी यार आदो आता हिम्मत होंगे आता मैं चाहूँ जैसे कि नरे कम्पिटेटिव दौर है कम्पिटेटिव दौर है प्रेशर माता माँ खो कभी कभी नाकामा फ्रुका ची गाँव से मान काबिल काबिल युद्ध पिछकिल्ला खुए एकेडमिक देना पूरा डिग्रेड कम छे दे डिग्री छे उस टाइम पे

0: 아두사 멘탈 헬프 고랑 야랑아 아두사 매니지 바자야 가스 자즈만 코야 알아갈아 삼바용진 아디 삼바니까 스페라 담이 코시 바자 키가 죽 삼바 가투죽 리알라 삼믹 도가 고니 삼믹
1: 주제레 가스 가스 사 마나 에르데모 바시 에레스모스 디 에돌센 멘탈 헬프 에카 나티 자만우니 디마그 피카 하 멘탈 헬프 가 가죽 도카링오친 가프루치 가디 프로블럼 파차나 코얀 가죽 카미리 통진하다
0: 저는 여러 니샤니 코랑가 프루치키 가타 디마리시 핫 보코이 감조르 선선조야 코얀 디카디온도 제스 포크동기 아데 스타스난 파타샤나가토 페힐레카 엘라샤나가토 엘라샤진
1: 가즈
0: 저는 그냥 메제롱진 여랑아가 프루익 파레샤니 가도 송스요트나 여랑아 코 삽세벨라 코 알락 두피 알락 두파 데나 바친 슈루 바친
1: 가즈
0: 코 잔도스냐 모둑차멘 코 코리 프레노냐 모둑차멘 와 도나 코 가족스 라스카토 코 베쇼크요트 빈나 돈 가마 감자신
1: 가즈
0: Ya sukuli performance ang kwe kam chachin, ko sukuli ka absent kwe kimo chachin. Ya dona ekdam se kwe yang nuk yaranga dena yachin, change chachin, kwe dukzo langzo yang nuk.
1: Kasa.
0: Ekdam se dukzo langzo yang takhir yong chen, ki behla du tuk shimet bin ya khate zong chen, ya mana kshaklung chan chachin hajo, ya mana ngukhanchi chachin. Chana emotionally de chi zong shtar gosha. Dungama yin signs and symptoms un. Yang aku di wajah saya pun sungsun susah. Dia na major cecik cecik ada sesuatu yang katanya suicide zirkan pun, kau kasih bahkan pun. Karena di mihna korang yang September ini dasikan das la World Suicide Prevention debat yang atas ki, jisme alami kau kasih zgakca si jago. Karena kadu di mihna korang yang suicide prevention month zirkan mihna. कि खुद का शिक्षित बसे रोकाई बच्चें जरे दी महीना उनको एक्टिविटीज हर जगह बच्चें अवेयरनेस दांचें छाने यारांग अधिकारी लाओ इन नगतांगा बहुत सारे दरे नौजवान कुन थों दु कि सुस खुद का शिवा सुलो या दुक कोच फियां सों सुलो में सों सुले नगतां पता चलते दिया नोग यारांग दुस गाप मीना पहला गोमा इंसानी देफ्रुई पहला जहनी सेहत वाल्तार गोशन यारांग कि खो खुआ नुक गात सुख चीज का तो कि जिसके वजह से खोस दी बीमारी खुआ नुक सुख चाना का तो यारा खुदकाशी घोरां बीमारी की यारा दुयांग जी शिमेन की एकदम से बेहतर खान पुदु जाचमेन वो तो ना गाती चीज उग जबाना खुदकाशी संभा यों का निपुण गाते गाते ठीक बसे मालता खोए दुआ जेरे या खुआडियों माबोस जैसे कि गाते से बात खुद का शिव बच्चे से बुखरंग घुनाई इंजर खान पो आदम जर इंजागत दे या डॉक्टर जी का माखियर भाई आयर देर खेर इंजागत दो वजह से चीज अच्छी नज़र बने यारा गा इंसान ची यारा ज़हनी तोर खो सेहत खराब छाना क्या उनक सोच समझ क्या बिल्कुल कम खत्म चाचा जब दे सोसाइट खुदकशी संभाग खोरंग कोई दिमाग आन डूल डूल लेंगे इमेट टाइम पे आनु ख्वामन हाग हो जामें ख्वामन दू पता है जामें कि दू आलेमें दू शियाकें दू अखोनें दू अताइन दू अमाइन व दू हलालें हरामें जरकन पु ख्वामन पता है जामें दू फिलाय रंगा जून का तो संभाग डूल लेंगे उतना या कभी कभी फ्रूस खुदकशी बस जाऊँ चेने रहा अटेम्प बस जाऊँ चेने एक बार दून सोच का त्यों ना नाम आज पाय रहा फॉवरिट और यारा साइकेट्री से हले बहुत जरूरी
1: कैसे
0: क्योंकि मेडिसिन की मेडिसिन दवाई तक माना खुआ आधे कुल्या कुल्या आधे होश माऊँ चेन कि जो आता है इंसुक जो आमा इंसुक जो नोरो इंसुक जो हलाल इंसुक हराम इंसुक हम पो अदरवाइज जो रूल और मापदा सा फूबेन या जो खुद कशी बचा सो हराम इन ठीक इन ठीक मेन देखा नाम एडवाइस तान जगह दे गाचां जेते खेरां फलां सोंसे हाँ खेस गाचां फांसे चाचीं जो दे सोच समझ पु कोई माने जहन में योंचा में जब तक मेडिसिन तांग समेत पा
1: कैसे
0: चाहे मेडिसिन में जरूरी नहीं यारा इसलिए यारा साइकेट्री अनुक जहनी दी तबेर बच्चस पे अनुक सुसेट इन इमरजेंसी
1: कैसे
0: फौरी तौर गा चुक सूची अनुक सुसेट बेसंभा योत ना या योत ना दो फुरी तो रहा एकदम से साइकेट्रिस्ट का खैर बोलें हेल्प एकदम ताज़ा है जैसे बना यारा दू थर्ड पोधियन में अपना लूस एंड लूस ना करो खुद खुद कशी बचें ऑब्वियसली
1: कैसे
0: दू मेन की नाते दस साल तक माना खोट ठीक चाचा मेन खुद खुद कशी बचें देनु यारा तख्सना करते होंगे
1: कैसे
0: पहला ना खो कुल्ला कुल्ला काम बस लुक चा मतलब पुरान चें यारा दिया डिप्रेशन ही सिम्टम्स होंगे कि खो पहला लास्ट बात पिंडोन भी बचा मेन या

0: मतलब खोई का थुक स्पिरिट चाहिए उतना हयो आते जैसा कि हम आप लोगों के साथ है पूरा फुल इमोशनल इमोशनल सपोर्ट वो जरूरी है पेरेंट्स नति पे नति अतामन इस देखा ध्यान कम तांदे छिमीन इस खास काल आता आमा अपो अपी गमस कि दू समेत कि फ्रुआ से पेने ता
1: पेने ता जो ना ना टाइम तंग ने था बिजी लुसे दांग दिरी दोष में नु पेरेंट्स पूरा बिजी लुसे
0: सिर्फ दू साल ते दे कि फ्रुआ मोबाइल गोशा दो
1: फ्रुआ
0: लैपटॉप गोशा दो फ्रुआ पेनर गोशा दो सर इमोशनल ले नानु कि खवा मतलब खे फीलिंग्स पोचे दो खे नंगोस यानु खे खलक पोचे दो खा खवा अदु तोक्स मतलब इमोशनली खवा चीर गोशक दुग जखन पो अदे का ध्यान ता मोशिन अदोला मतलब खवा सेफ स्पेस चोचा अलग खवा टाइम ची फिंचा खासकर फ्रुनला यंतिस यंती जिंदगी दी टाइम पिका का सुख यंतिस लास का तुबास उतना देना लास पोइंटा आयां दुलिन दुखचिन चाहे नोरोन चाहे होनी इसलिए दुनिया का सबसे ज्यादा ध्यान तांचा दोनों यहाँ चेचे ज्ञान तांग आखिरी इस पर यहाँ तांडी का ना जूझ रहे कि बोमो बुझा इसका मतलब एक दूसरे का इज्जत बस डुलचस्प
1: होता है टाइम का लुसे दांग दिरी दोष में अनुपेन पूरा बिजी लुसे
0: सिर्फ दो साल तक देखिए फ्रॉम मुशी चोचा अलग खा टाइम चिपिंचा खासकर फ्रून ला यंतिस यंतिस जिंदगी दी टाइम पीकर का सुख यंतिस लास का तो बस उतना देना लास पॉइंट ता आयां दूलें दुखचिं चाहे नोरोन चाहे होनी इसलिए दुनिया का सबसे ज्यादा ध्यान तांचा दोनों यहाँ से चेक यंता आखिरी इस पर यहाँ तांडी का ना जूझ रहे कि बोमो बुझा इसका मतलब एक दूसरे का इज्जत बस डुलचस पुखरां सोसाइटी हम बहुत जरूरत है
1: कस वक्षी सर यारा यंग फेरे चिची गुजु सेरिंग मजरे ते यारंग आकाशवाणी करगिल स्टूडियोस के ते दुचोस प्रदमचन दुचोस टॉपिक उनिका अति फेसन अति जगवान उनि फिला हगो तामी फिला यारा दिकस क्यों तू फिला यारा उजु सेरिंग मो वक्षी
0: कस वक्षी सलाम अलैकुम
1: Dianang yang budirin ir deluxi program putamaton ardiyamayu diantar demo suri duktuk inshallah nanme lusna yung mait bi program pian yantang na yang tugit deman po nga chan saga izin chas debuz ya ju khuda nar sakhmani fagrin. Miriam Kamachas Akashwani Kargil Kanazin was put to Sutun Sonsukaseta program in Meset, Achino Monifia, program for Chukhanpin Archon Nargis, program producer Gulzar Hussain.
2: Assalamu alaikum, Dirin Achinomoni, program Pojivias Lakurin, Achayan and Tikhadmel Lahazir Sonset, Nachichurna, Juna Salampo, Kabul, Sonshik. Kasa programar galuk jakhana chenomun kakafonun sagbatsiksnan langas. Alemi yaume bahri safar zere di hafta ur siyanazom se di skolla spereksum zirbi praluz bed. Di hafta u leka september il se akhiri hafta anuk malla kyongmatang yaan di hafta u stiton pu samandari stro leka safar bakanna tsong bakanuni ehmiyat pu ngozin chachuk bimingna yaan di tsongonun la sket kyong mimingna Mimangsun lahago tang mimingnar sisi intsuk. Jazirbana dunyayi tsongswe si chogo poik samandari strolika promachik yulunianuk lepchugetang. Bahri jahasi strolika zaptungna nyambo-nyambo goslagna ka kasumingati yulunianur gospodpi samanun e yulna de yulianuk Chi jaha sistrolika lepchuk patang, de feresna di jaha samandari maholi strungluk, samandari anuk chayat pi gandagi nishitina takring di sokstakstok na gandagi n takring bemina, yang samandari strolika safar bakanun laga kasume jiksmo nishitina strungluk bemina di jakpo anuk yami mangsul hagotangma chetang. Yang di alami yame bahri safar zere yang diyong itu yung chugetang ki samandari dunya di tamam mayani ga yulchik inna ema malik na dema malik yanuk di chi jaha sistrolika argos pi chalag na ga yulian met pi samanun ayulian met pi samanun de yulian uk ker pi strol chetang yang dia chi jaha sistrolika yul ngang ma laktu che strol chigang chetang kasani ng ispira wang mi chindu ng ispira wadya kajaksi akashwani gargili situdian uk Dr. Sajjad Saiba skyoju sikyong siyod assalamualaikum
3: Wa alaikum assalam.
2: Dr. Saab jo gyo se yaran yari rinchan waksen wakspin se di kas kyo tchas la nga ches uju tseri ngo zere jo. Yangi goma saol pu dia jo ki ata september il zengi shir tsaga. Di warming day zere.

성 초짜맨. सरमानी जरखन पो जवानुनी हिम्मत पो बचिक गलबाई हजरत अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम अमीर अल मोमिनीन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिफ्ज़ मुल बचित एलुमिस यरंग लम्स तंचाइन यंग अमलिस यरी मकसद पे कलहब चुकचाइन गासु चिगिस यरंग आर दोंगजोग्स बना ख्वादिर नग्रगन छचाओ यरंग चिस्मत छचाइन अमीर अल मोमिनीन हजरत अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिफ्ज़ मुल बचत इंसान नयम बो दुखन सख बचिक उसमत चीज पो हसत इन मौला अली अलैहिस्सलाम हिफ्ज़ मुल बचत रंगी मिथ्यानु न खुरसना सूची की लोकपाल ला गुम्बा लेंसना दोना कलम स्त्रुलसना संबतंग समेने मिस्त्रुल बरगोशाइन नतीस पेरानिस चिगिस्किंग थचुचाइन यंग चिगिस्किंग सरचुचाइन

सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं शेख यासीन। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। कानून साज असेंबली में आज भी अवामी नौईयत के कई मामलों पर हुआ बहस व मुबाहसा। टीईटी से मुतल्लिक करारदाद ऐवान में पास। उत्तर प्रदेश में एक मुसाफिर बस में लगी आग में कई अफराद अजान। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला का इजहार रंज। जम्मू कश्मीर में सनती पॉलिसी की मौसर अमल आवरी को यकीनी बनाने की वजीर आला की हिदायत। और आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है पीर पीरान हजरत शेख सईद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक। पेश है खबरों की तफसील। कानून साज असेंबली का इजलास श्रीनगर में खुश असलूबी से जारी है। आज भी कई अरकान ने अवामी नौईयत के मुतअद्दिद मामलात को उजागर करके मुतल्लिका वजीरों से इनके जवाबात तलब किए। वजीर तालीम सकीना ईतो ने सजाद शफी के सवाल का जवाब देते हुए ऐवान को जानकारी दी कि तालीमी इदारों में तलबा और असातिज़ा के तनासुब में माकूलियत लाने के लिए इजाफी अमला फराहम किया जा रहा है। वजीर मौसूफा ने सुनील कुमार शर्मा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत जम्मू सूबे के दूर अफ्तादा इलाकों बशुमू पार नाग सैनी असेंबली हल्के में तिबी निगहदाश्त के शोबे को बढ़ावा देने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। देही तरक्की और पंचायती राज के वजीर जावेद अहमद डार ने पीरजादा फारूक अहमद शाह गुलाम अहमद मीर और इरफान हफीज लोन

की वजह से हुए कीमती जानों के ज़िया पर रंज का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने सोगवारों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस हादसे पर दुख का इजहार करते हुए मुतासरीन के साथ यकजहती जाहिर की है। उन्होंने भी जख्मियों की फौरी सेहतियाबी के लिए दुआ की। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं।

0: साल मुकम्मल कर रहे हैं। इन 25 वर्षों के सफर की कामयाबी वज़ीर-ए-आज़म के जन सेवा से देश सेवा के जज्बे से वाज़ेह हो जाती है। सरकार विकसित भारत 2047 का हद्दफ हासिल करने के लिए मुसलसल काम करती रही है। जामे तरक्की और समाजी बाख्तियारी के नतीजे में अवामी जिंदगी में काफी बदलाव आया है। मरकजी हुकूमत की तरफ से अमलाए जा रहे प्रोजेक्टों की बदौलत जम्मू कश्मीर भी तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है। खुसूसी सीरीज सेवा संकल्प अभियान के सिलसिले में समाप्त करें पीएम जनमान से मुतलिक हमारे नुमाइंदे सुहेल भट्ट की ये रिपोर्ट।
1: मरकजी सरकार की तरफ से समाज के पिछड़े तबके के लोगों के लिए जो फलाही स्कीमें शुरू की गई हैं उनमें पीएम जनमान यानी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान को कलीदी अहमियत हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत के मुताबिक शुरू की गई अपनी नौयत की ये मुनफरिद स्कीम मुल्क में 15 नवम्बर 2023 यानी जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर शुरू की गई। स्कीम के तहत मुल्क की 18 रियासतों और यूटीज में 75 वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कायम करने का निशाना मुकर्र किया गया। स्कीम के लिए 24,104 करोड़ रुपए मुख्तस रखे गए और वजारत कबायली उमूर को इसकी अमलावरी के लिए नोडल वजारत मुकर्र किया गया। स्कीम के जरिए कबायली तबके के लोगों को पक्के रिहायशी मकान, साफ पीने का पानी, तालीम, बिजली, तगजिया और दीगर किस्म की सहूलियात मैसर रखी जा रही है। इसके अलावा तबके के नौजवानों के लिए रोजगार के देरपा मौके और वोकेशनल तरबियती कोर्स भी दस्तियाब रखे जा रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ नजर दौड़ाने से ये बात अया हो जाती है कि स्कीम के बारावर नतीजे सामने आ रहे हैं और आम लोग वज़ीर-ए-आज़म की इस अनोखी पहल से काफी मुतमईन हैं। जम्मू कश्मीर में अगर पीएम जनमान स्कीम बराह रास्त लागू नहीं हो रही है ताहम यूटी में इंतजामिया और कबायली उमूर महकमा इस तबके की बहबूदी और उन्हें समाजी व इक्तिसादी तौर बाख्तियार बनाने के लिए कई प्रोग्राम और प्रोजेक्ट अमला रही है जिनकी बदौलत जम्मू कश्मीर में इस तबके का मयार हयात हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रहा है। सुहेल भट्ट, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर।
0: चीफ सेक्रेटरी अटल डिल्लू ने जम्मू कश्मीर में लेबर कवानीन की मौसर अमल आवरी पर जोर दिया है। श्रीनगर में आज एक मीटिंग के दौरान उन्होंने लेबर कवानीन की रूह से मुख्तलिफ कारखानों और तजारती इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने की हिदायत दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉ फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी जमात जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने आईनी हकूक दिलाने के लिए जदोजहद जारी रखेगी। शोपियां में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार लोगों के मुतालबात पूरा करने और उनके मसाइल हल करने में संजीदा है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा ने आज सांबा जिले में पार्टी कारकुनों की एक मीटिंग के दौरान तंजीमी उमूर और सेवा संकल्प अभियान की पेशरफ का जायजा लिया। कानून साज असेंबली में हिजब इख्तलाफ लीडर सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर लोगों के साथ किए गए वादे पूरा करने में नाकाम होने का इल्जाम आयद किया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि सरकार ने एएवाई कुंभों को 12 गैस सिलेंडर सालाना मुफ्त फराहम करने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि लोगों को चाहिए कि वह सरकार को जवाबदेह बनाएं। बीजेपी जम्मू कश्मीर के अहतमाम से आज श्रीनगर में सेवा संकल्प अभियान के तहत कई प्रोग्राम मुनक्द हुए। इन प्रोग्रामों में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल के अलावा दीगर कई लीडरों ने शिरकत की। पार्टी की जानिब से खून का अतिया देने के कैंप भी मुनक्द हुए। कश्मीरी माइग्रेंटों की गैर मनकूला जायदादों के दावों से मुतलिक एसोसिएशन ने सरकार से मुतालबा किया है कि वह वादी में उनकी गैर मनकूला जायदादों को जल्द अज जल्द बहाल किया जाना चाहिए। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन के जुमा ने मुतलका डिप्टी कमिश्नरों से अपील की कि वह उनके दावों पर फौरी कार्रवाई के लिए ठोस इकदाम करें। उन्होंने कहा कि इस जमन में पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और वजीर आला को यादाश्तें पेश की गई हैं। वादीवर में आज पीरी पीरान हजरत शेख सईद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह का सालाना उर्स मुबारक तुज़ को एहतशाम और अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब उनके आस्थान आलिया वाका खानयार श्रीनगर में जारी है जहां रात भर वादी के अतराफ व अखनाफ से आए हुए अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शब बेदारी करके खत्मातुल मुआज़मात और नात व मनाजात की रूह परवर मजालिस में शिरकत की।

0: रामेश्वर सिंह, पीरजादा फारूक, अहमद शाह, शक्तिराज परिहार, हसनैन मसूदी, सज्जाद गनी लोन और नरेंद्र सिंह शामिल हैं। नायब वजीराला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने एमएलए बलवंत सिंह मनकोटिया की तवज्जो दिलाव नोटिस का जवाब देते हुए ऐवान में बताया कि सरकार ने हालिया सैलाब से मुतासर हुई सड़कों की बहाली के लिए जरूरी इकदाम किए हैं। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राणा ने इरशाद रसूल कार की तवज्जो दिलाव नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि महकमा सोपोर हलके में लोगों तक पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन और अमृत के तहत मुतद्दिद वाटर सप्लाई स्कीमें अमला रहा है। सेहत व तिबी तालीम की वजीर सकीना ईतू ने जावेद हसन बे की तवज्जो दिलाव नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत तमाम तिबी इदारों में अहम साजो सामान दस्तियाब कराने, नीस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला में वेंटिलेटर काबिलकार बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। ज़िरात के वजीर जावेद अहमद डार ने ऐवान को बताया कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में गैर मियारी और नकली जरासीम कुश अद्वियात की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने के लिए मुनज्जम लाही अमल तरतीब दिया है। वो मेंबर असेंबली वहीदुर्रहमान पर्रा की तवज्जो दिलाव तहरीक का जवाब दे रहे थे। ये था कानून साज असेंबली में आज हुई कार्रवाई का खुलासा। इजाजत दें, शब बखैर।
1: अभी तक आप आकाशवाणी श्रीनगर से उर्दू में खबरें और तबसरा सुन रहे थे। मीडियम पर हम आकाशवाणी करगिल से बोल रहे हैं। सामिन शब के 8 बजे हैं, पेश खिदमत है प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए।

अभी तक आपने बंटी बबली फिल्म में शंकर महादेवन और साथियों को सुना। नगमे निगार थे गुलजार और मौसीकार थे शंकर एहसान रॉय। लीजिए प्रोग्राम का अगला गीत सुनते हैं जीत फिल्म से। जिसे गाया है सोनू निगम और अलका याग्निक ने। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है नदीम श्रवण ने।

0: कारे कारे नैना।
1: अभी आपने शंकर महादेवन और साथियों को सुना। नगमे निगार थे समीर और मौसीकार थे शंकर एहसान रॉय। लीजिए प्रोग्राम का अगला गीत सुनते हैं बेवफा फिल्म से, जिसे गाया है गुलाम अली ने। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है नदीम श्रवण ने।

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी करगिल से बोल रहे हैं। सामिन, अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में खबरें रिले करेंगे। रिले का थोड़ी देर इंतजार कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। सेंसेक्स 1248 अंक गिरकर 73,581 पर हुआ बंद। जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में रोशिबिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: श्री मोदी ने कहा कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित होनी चाहिए।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक

0: विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात मिशन कर्मयोगी की।
1: मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय मूल्यों पर आधारित और वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाली भविष्य के लिए तैयार सिविल

0: पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विषयों, कार्यों और व्यवहार संबंधी क्षमताओं से जुड़े 6,500 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े 200 से अधिक पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को नागरिकों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील और नागरिक केंद्रित बनाना है।
1: हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे।
0: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान ने कहा कि मिशन कर्मयोगी की स्थापना विकसित भारत 2047 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से और उच्च गुणवत्ता के साथ हासिल करने की दृष्टि से की गई है।
2: विकसित भारत का जो एक आशावादी हमारे लक्ष्य है, उनको समय से प्राप्त करना, गुणवत्ता के साथ प्राप्त करना और सबसे अहम बात जो हमारे नागरिक हैं, उनको गुणवत्ता युक्त सर्विसेज किस तरह से हमारे लोक सेवक प्रदान करें।
0: केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए आईगोट प्लेटफॉर्म पर हर वर्ष निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना जरूरी है। इन पाठ्यक्रमों को उनकी वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI टेक्नीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CFC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% किया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटाया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने वनस्पति तेल या स्टार्च से बने कृत्रिम पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत पहले से लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों को अपने नामकरण, लेबलिंग या विपणन में पनीर शब्द का उपयोग बंद करना होगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की।
5: A good book opens a window of ideas, history and experience. It invites us to think, not only to think, to question. Not only to question, to understand, and sometimes to look at familiar subjects from a new perspective.
3: प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजासुब्रमणी ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणी ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर भी बल दिया। जनरल सुब्रमणी ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है।
6: The character of war,
7: युद्ध की प्रकृति तेजी से बदल रही है और हमें भी खुद को इसके अनुरूप ढालना होगा। इसके लिए हमारी औद्योगिक व्यवस्था, खरीद प्रक्रिया और कार्य प्रणाली में भी तेजी से बदलाव जरूरी है, ताकि हम बदलती युद्ध परिस्थितियों के साथ कदम मिला सकें।
5: With the changing character of war.
3: भारत

0: मजबूत व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को पारस्परिक रूप से लाभकारी बनाने के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव नितिन कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आर्थिक मंत्रियों की बैठक और आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों के परामर्श में भाग लिया। इस दौरान आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की चल रही समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पर निर्वाचन आयोग के कामकाज और विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगाए गए आरोपों के लिए आलोचना की। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम निर्वाचन आयोग को किसी भी समय जब वो उचित समझे एसआईआर आयोजित करने का स्पष्ट अधिकार देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। एक रिपोर्ट।
1: गहरे डिप्रेशन ने कोरापुट, गजपति, मलकनगिरी, गंजाम, नवरंगपुर और रायगढ़ जिलों को प्रभावित किया है, जिससे 37 ब्लॉक, 127 ग्राम पंचायतें और 273 ग्राम प्रभावित हुए हैं। 20 वाड़े वाले 5 शहरी इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने बताया है कि 8,082 लोगों को जोखिम वाले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सरकार ने 2400 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम चालू कर दिए हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स एनडीआरएफ और फायर सर्विस के टीमों को तैनात किया गया है और राहत सामग्री का इंतजाम किया गया है। मौसम विभाग ने कल व परसों भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तेलंगाना में भी तेज बारिश की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,248 अंक लुढ़ककर 73,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 384 अंक फिसलकर 23,063 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: आर्थिक विशेषज्ञ उद्यन रे ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने सहित कई कारणों से शेयर बाजार में गिरावट आई है।
3: आज स्टॉक मार्केट में जो हमने गिरावट देखा है उसके कुछ प्रमुख कारण ऐसे हैं। सबसे पहले जो कच्चे तेल के दाम फिर बढ़े, दूसरा है बॉन्ड्स की जो यील्ड्स हैं उसमें बढ़ोतरी की वजह से एक नर्वसनेस आई। पर सबसे महत्वपूर्ण जो घटना आज हुई है वो IRDA जो रेगुलेटरी बॉडी है बीमा क्षेत्र में, उन्होंने एक डिस्कशन पेपर निकाला है जिसमें वितरण में जो कमीशन होते हैं उसमें कटौती के बारे में बात की है।
0: और अब जापान एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
4: एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। वहीं रश्मिना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।
5: अच्छा लगा, ये मेरा थर्ड एशियन गेम्स मेडल है, उसके लिए भी मैंने काफी मेहनत किया है। चैलेंजिंग ये था कि मैं इस बार भी गोल लाने का, पर मैं नहीं दिला पाया। नेक्स्ट टाइम और ज्यादा मेहनत करके जो भी गलतियां हैं वो सुधार के वापस आएंगे।
4: निशानेबाजी में अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने स्कीट मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अनिमेश कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मुक्केबाजी में परवीन ने 65 किलो के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। स्क्वाश और टेबल टेनिस के अलग अलग वर्ग में खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदकों के साथ 15वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
0: जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में मानवाधिकारों के उल्लंघन और सामाजिक आर्थिक अभाव का मुद्दा उठाया गया है। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा

0: सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। और जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशू में रोशी बिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says spirit of service is the greatest driving force for country's progress. Highlights government innovative schemes bringing 25 crore citizens out of poverty. Government cuts basic customs duty on crude edible oils to ease domestic prices. In Odisha, heavy rain continues under influence of deep depression in its southern parts and adjoining north coastal Andhra Pradesh. Sensex plunges 1,248 points to settle at 73,581. And at Asian Games in Japan, India won silver medals in mixed relay race and wushu. Seema Kumari bags historic bronze in 10,000 meter race. Double sculls rowing and mixed skeet shooting teams also won bronze. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते हो तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
1: Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The Prime Minister said, we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India.
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड सर्विस शुड बी द मेन पर्पस ऑफ लाइफ एंड मस्ट बी इनहेरेंट इन एवरी इंडिविजुअल। ही सेड सेवा परमो धर्म, सर्विस एज द हाईएस्ट ड्यूटी शुड रिमेन द गाइडिंग प्रिंसिपल।
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: During the interaction, Seva Yatri shared their experiences with the Prime Minister. Defence Minister Rajnath Singh has said that it is essential to keep ground reality and national interest in mind for a good security policy. He was addressing an event organised by a media house in New Delhi. The Defence Minister said that a holistic approach must be adopted to address the challenges related to national security. The minister acknowledged that without diplomacy, military preparations can lead to confrontation and the security dilemma. The government has reduced the basic customs duty on major imported crude edible oils with a view to moderating

0: basic customs duty on crude edible oils to ease domestic business. I beg your pardon, prices. In Odisha, heavy rain continues under influence of deep depression in its southern parts and adjoining north coastal Andhra Pradesh. Sensex plunges 1,248 points to settle at 73,581. And at Asian Games in Japan, India won silver medals in mixed relay race and wushu. Seema Kumari bags historic bronze in 10,000 meter race. Double sculls rowing and mixed skeet shooting teams also won bronze. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीराजम मोदी ने कहा है कि खिदमत का जज्बा मुल्क की तरक्की के लिए सबसे बड़ा मुहर्रिक है। वजीराजम ने 25 करोड़ शहरियों को गुर्बत की सतह से बाहर निकालने के लिए हुकूमत की इख्तराई स्कीमों को उजागर किया। हुकूमत ने घरेलू कीमतों को कम करने के लिए खाम खुर्दनी तेलों पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी में कटौती की है। ओडिशा में जुनूबी इलाकों और मुत्तसिला शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश में हवा के गहरे दबाव के बायस शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। सेंसेक्स 1,248 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 73,581 पर बंद हुआ। और जापान में एशियाई खेलों में भारत ने मिक्स्ड रिले दौड़ और वुशु में चांदी के तमगे हासिल किए हैं। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य का तमगा जीता है, जबकि डबल स्कल्स रोविंग और मिक्स्ड स्कीट शूटिंग टीमों ने भी कांस्य के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वजीराजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि साल 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत की तामीर के लिए सभी को नौजवानों के अहम रोल को पुरजोश तरीके से बढ़ावा देना होगा। जनाब मोदी ने वड़नगर से वाराणसी का सफर कर रहे सेवा यात्रियों से वर्चुअल तरीके से खिताब करते हुए ये बात कही। वजीराजम ने कहा कि सियासत, इंतखाबात और निजाम हुक्मरानी की अपनी अपनी जगह है। उन्होंने मजीद कहा कि हम मुल्क की तामीर और तरक्की याफ्ता भारत के अज़्म को पूरा करने के लिए वक्फ लोग हैं।
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: वजीराजम ने कहा कि खिदमत ही जिंदगी का असल मकसद हयात होना चाहिए और ये जज्बा हर फर्द में मौजूद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सियासत में भी कोई आला ओहदे पर पहुंच जाए तब भी खिदमत ही मशाले राह होनी चाहिए।
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: जनाब मोदी ने कहा कि चाहे वो पीएम किसान हो या पीएम सूर्य घर योजना, खिदमत ही सबसे बड़ा मुहर्रिक है और ऐसी बेशुमार स्कीमें हैं जो सफे आखिर तक खिदमत की फराहमी के लिए बनाई गई हैं। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि यह खिदमत का जज्बा ही है जिसकी बदौलत 4 करोड़ गरीब लोगों को मुस्तकिल मकानात मिले हैं।
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते हो तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने हैं। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
1: हुकूमत ने खुर्दनी तेल की घरेलू कीमतों में इस्तेकाम पैदा करने के मकसद से दरामद किए जाने वाले सभी खुर्दनी तेलों पर आयद होने वाली बेसिक कस्टम्स ड्यूटी बीसीडी में कटौती की है। इस कदम से खुर्दनी तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों में तेजी से हो रहे इजाफे के दौरान ग्राहकों को राहत मिलेगी और महंगाई के बढ़ते दबाव से निमटने में मदद मिलेगी। सारफीन के उमूर, खुराक और अवामी निज़ाम तकसीम की वजारत ने बताया कि सूरजमुखी के खाम तेल पर लगने वाली बेसिक का